आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है एफएम बैंड 103 दशमलव 7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 27वीं तिथि तदनुसार 17 मई सन 2026 इस समय सुबह के 8:54 और 27 सेकंड्स हो गए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू करते हैं।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 9:10 पर रामचरितमानस गान सुनेंगे, 9:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ भक्ति रचनाएं, 9:40 पर आपको सुनवाई जाएगी जल की शादी का इश्तेहार, इसके बाद तलत अजीज की गाई कुछ गजलें भी आपको सुनवाई जाएंगी।

0: फिल्म संगीत में आप सुनेंगे सुबह 10 बजे गाने पुराने ज़माने के, 10:30 पर गाने नए, तराने नए, और शाम 6:05 पर भी होगा फिल्म संगीत। इसके अलावा आप सुनेंगे शाम 7:30 पर फिल्म संगीत में। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर बच्चों के लिए होगा कार्यक्रम बालवाड़ी। शाम 6:20 पर लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में आप सुनेंगे चित्रा पांचाल और भगवान दास महावर के गाए कुछ लोक गीत। शाम 7 बजे सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी। हेलो गोरबंद लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। रात 9 बजे सुगम संगीत के प्रोग्राम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ।

0: राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हेग में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हो गया है। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 183 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। बगरू के ठिकरिया गांव में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने VC के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। समारोह में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार देश के विकास का रोड मैप बनाकर पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए MOU किए गए हैं। वहीं कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह में जाने के लिए प्रेरक पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठिकरिया गांव तक EV बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित EV बस का उपयोग कर आम जन को ग्रीन मोबिलिटी का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। CBI के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले CBI ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को कल पुणे की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में इससे पहले कई नवाचार किए गए हैं जिससे सदन की

0: अनूठी पहचान बनी है। एक रिपोर्ट।
1: नई राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण के बाद भवन को गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ ही यहां कई नवाचार किए गए हैं। इनमें डिजिटल और कागज रहित व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, जन दर्शन कार्यक्रम, शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और औषधीय वाटिका शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी, केंद्रीय कक्ष की परिकल्पना और संविधान क्लब को विचार विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कई कार्य किए गए हैं। इनसे राजस्थान विधानसभा की देश भर में अनूठी पहचान बनी है। ये नवाचार जनता और युवाओं को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से रूबरू कराते हैं, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व के प्रति भी जागरूक करते हैं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रवासी पाली वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जिले में आओ गांव चले अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने अभियान के लिए जिला स्तर पर एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास जैसे जनउपयोगी कार्यों में प्रवासियों से सहयोग प्राप्त करना है। इच्छुक प्रवासी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सहयोग कर सकते हैं। जैसलमेर में आम जन तक पौधों की जानकारी और उपलब्धता के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पंच गौरव अभियान के तहत एक डिजिटल कियोस्क, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही उन्हें डिजिटल तरीके से पौधे खरीदने की सुविधा भी देगा। ये डिजिटल डिस्प्ले ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वन विभाग के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने ये जानकारी दी।
2: करीब 24 जो प्लांट स्पीशीज है उनके बारे में एक इंटरेक्टिव वे में हम इस कियोस्क के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। जो ये कियोस्क है हम कलेक्ट्रेट या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, तो इसके माध्यम से जो जितने भी पौधे हैं 24 पौधे उनके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। उसके यूजेस क्या है, उसे प्लांटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सरी का लोकेशन वगैरह भी इसमें इस कियोस्क के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहां से पौधे फिजिकली लेना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि लोग इसमें स्कैन करके लोग अपने SSID से परचेज कर पाए इस कियोस्क के माध्यम से।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नागौर का चैनल है। 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। कलाकार थे भूपिंदर सिंह और संगीतकार सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरविचार से बोल रहे हैं। 9:20 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ भक्ति रचनाएं।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की गई कुछ भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 9:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए झलकी शादी का इश्तिहार। कलाकार हैं विनोद कृष्ण भट्ट, बीबी कपूर और लता गुप्ता।

एक अमीर घराने में शादी बजरिए खतो किताबत तय होती है। दूल्हा मियां मंगेतर को देखने के लिए इश्तिहार में दिए हुए पते पर तशरीफ लाते हैं और गलती से अपनी ससुराल के घर की बजाय उसके पड़ोस में पहुंच जाते हैं।

0: ये मेरी शहजादी का घर है, लेकिन लेकिन वो तो सामने कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बरामदे में वो एक औरत है, गालिबन उसकी माँ होगी, यानी कि मेरी होने वाली सास। उसका चेहरा खूबसूरत है और इस बात का सबूत है कि मेरी शहजादी खूबसूरत होगी। मेरी सास काफी बाइज्जत औरत जान पड़ती है, मैं इसे नहायत अदब से कहूंगा, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वो कहेगी, जीते रहो मेरी बेटी के सुहाग। नहीं नहीं, इस तरह से तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अपनी शहजादी के लिए बहुत बेताब हूं। तो फिर मैं एक मजिस्ट्रेट की तरह रौबदार चेहरा बनाकर अपनी होने वाली सास के पास जाता हूं। आदाब अर्ज है मोहतरमा।
1: आप कौन हैं?
0: मैं वो जिसकी आप मंतजर रही। मुझे मकान का बहुत देर से पता चला, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आखिरकार पता चल ही गया।
1: जी हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बस पता तो मैंने साफ दिया था,
0: लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहा था, कोई एक मुसीबत है। खैर, मैं आधा वर्ष करता हूँ, मैं आधा वर्ष करना तो भूल ही गया था।
1: कोई बात नहीं, आखिर इतनी तकल्लुफ की जरूरत भी क्या थी?
0: जरूरत क्यों नहीं मोहतरमा, फौरन दूसरा ये ख्याल कर लेता है कि मुझे आधा वर्ष किया ही नहीं। अगर मुझे नहीं तो फिर किसको करना है? हालांकि मुझे मालूम था कि आपके यहाँ तकल्लुफ की इतनी जरूरत नहीं होगी।
1: आपको बहुत तकलीफ हुई। खैर, पहले मुझे ये बताइए कि आप कुछ पियेंगे?
0: मैं पीऊंगा? वो मैंने कभी कुछ नहीं पिया, सिर्फ पानी पीता हूँ, और शराब तो मैंने कभी कभी कभी भी नहीं छुई, कभी पी ही नहीं।
1: शराब? तो इसका मतलब है कि आप शराब ही पी सकते हैं। खैर ठहरिए, मैं अभी पानी लाती
0: हूँ। बाकी की सारी बातें तो मैं भूल ही गया, और फिर वही लुकनत। ठीक है, अब मैं अपनी जबान को पकड़ कर बातें करूंगा, लेकिन ये लोग काफी अमीर दिखाई देते हैं, मुझे होश आवाज साध कर बात करनी चाहिए। हमारी बातें सुनकर शहजादी जनानी से चली आएगी, अटखेलियां करती हुई सर्दी के मौसम के बादल की तरह आहिस्ता आहिस्ता। वो यकीनन पर्दा की इतनी कायल नहीं होगी, आजाद लड़की होगी, आजाद। आह आह, ससुराल में इंसान की कितनी इज्जत होती है। अम्मी जान पूछती हैं क्या पियोगे, वरना कौन पूछता है आजकल।
1: लीजिए, पानी पी लीजिए। तो अच्छा, ये बताइए कि मैं आपको कितने रुपए दूं?
0: रुपए? क्या आप मुझे रुपए पैसे का बंदा समझती हैं? वो मोहतरमा, मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। जी हाँ,
1: ताज्जुब है, अरे अगर आप रुपए नहीं लेते तो खाते कहाँ से हैं?
0: खाता कहाँ से हूँ मोहतरमा? देखिए, हमारी अचार की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है।
1: अचार की भी फैक्ट्रियां होती हैं क्या? मुझे नहीं मालूम था।
0: कोई बात नहीं मोहतरमा, कोई बात नहीं, फिर भी रुपए पैसे की कतई जरूरत नहीं है।
1: शायद आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, ये लीजिए रुपए। और आप तो...
0: नहीं मोहतरमा, मैं इन रुपयों के हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने अर्ज किया ना कि दरअसल मैं इन रस्मों का कायल नहीं हूँ।
1: क्या कह रहे हैं आप, रस्मों का कायल नहीं हूँ? अच्छा, शायद ये रुपए थोड़े हैं।
0: जी ये बात नहीं है, दरअसल मैं इन रस्म रिवाज का कायल नहीं हूँ, और फिर आपको तकल्लुफ भी नहीं करना चाहिए। सच पूछो मोहतरमा, तो मैं तो दहेज तक नहीं चाहता।
1: दहेज?
0: जी।
1: अरे क्या मतलब है आपका? खैर, आप चाहें दहेज ना ले, ये आपकी मर्जी, ये पैसे तो आपको जरूर लेने पड़ेंगे।
0: नहीं मोहतरमा, नहीं, देखिए मैं सख्त शर्मिंदा हो रहा हूँ, मुझ पर घड़ों पानी पड़ रहा है, और मैं जमीन में गड़ा जा रहा हूँ मोहतरमा। अगर आप इसरार करेंगी तो मैं रो दूंगा। मैं कहता हूं कि मैं दहेज वहेज का ख्याल नहीं हूँ।
1: खूब, फिर तो आपसे बहुत से लोग खुश होंगे, खसूसन आपके ससुराल वाले जिनके यहाँ आपका रिश्ता तय।
0: जी जी जी हाँ, नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है कि वो मेरे लब सूख रहे हैं, मुझे पानी का एक गिलास ला दीजिए।
1: फिर पानी चाहिए
0: जी?
1: अच्छी बात है, अभी लाइए।
0: अच्छा।

0: खुदा कसम वो गा रही है, मेरी शहजादी मेरी दुल्हन क्या गाती है, मजा आ गया। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास है, उसे क्या मालूम कि उसके दुख दर्द का मदावा आ पहुंचा है और बहुत जल्दी उसकी खिसके गले से बाहर मिला चाहती है। ओफो, मैं अम्मी जान के सामने हरफे मतलब की बात कहना तो भूल ही गया। अब कहूंगा, अब जरूर कहूंगा। ठीक है,
1: ये लीजिए पानी। हाँ, आप खुश कैसे हो रहे हैं?
0: ठहरिए ठहरिए मातरी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपका बहुत ही फर्जंदी हूँ और आपने मुझे ममनूनी में ले लिया। नहीं नहीं, मैं कुछ गलत कह गया, मैं आपका ममनूनी हूँ कि आपने
1: आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं।
0: बस जो कुछ मैंने कहा ना उसका उल्टा समझ लीजिए, बस समझ गई ना आप। और हालांकि आप हरगिज इज्जत के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हालांकि पैदा हो जाती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कोई पैदाइशी नुक्स नहीं है। मेरा मतलब था कि मैं हरगिज इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल अहमक हूँ, लेकिन हूँ आपकी ममनूनी के काबिल और फर्जंदी।
1: माफ कीजिए, मैं आपकी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी।
0: अभी मुझे याद कर लेने दीजिए, हालांकि मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप चूंकि मैंने खिदमत आपके सुपुर्द की है तो मैं उसे नहायत खुश असलूबी से सर अंजाम दूंगा और उसे अपनी ऐन वो क्या लफ्ज होता है, फरमा बरदारी, हाँ ठीक है, फरमा बरदारी के लिए सआदत मंदी समझूंगा।
1: ये मामला टेढ़ा सा है, आप तो बस मुझे
0: तो फसक हो जाएगा, ये मेरी मौत होगी।
1: मौत? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? बात ऐसी है कि वो दरअसल बहुत बीमार है।
0: क्या वो बहुत बीमार है? हाय, वो मर गई तो मैं यकीनन मैं भी मर जाऊंगा।
1: हाय, आप क्या मर जाएंगे?
0: मैं तकल्लुफ का कायल नहीं हूं मौतरी माँ, दरअसल मुझे उससे बहुत मोहब्बत है।
1: है? मोहब्बत है?
0: जी हाँ, मोहब्बत बिन देखे भी हो सकती है।
1: बिन देखे खाक आराम आएगा, परसों से उसने कुछ नहीं खाया, मुश्किल से चार शेर खाया होगा, उसे भूख भी नहीं लगती।
0: क्या भूख भी नहीं लगती और बिना भूख के चार शेर खा जाती है?
1: खा जाती है? अरे क्या मतलब, आपके यहाँ इज्जत और इफ्तिखार के बहुत से अल्फाज हैं क्या?
0: हाँ, मुझे इज्जत करनी ही चाहिए, और मैं पूछता हूँ जब भूख लगती है तो और कितना खा जाती होगी?
1: जाती होगी, मेरा अंदाज है कि डेढ़ मन के करीब खा जाती होगी। हाँ? और फिर भी भूखी की भूखी।
0: मोहतरी माँ, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं?
1: उल्टा मुझे मालूम होता है कि आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
0: हाँ? वो उनकी प्यास भी बहुत होगी।
1: उनकी प्यास? समझ लीजिए कि तीन चार मटके पानी पी ही जाती है।
0: तीन चार मटके? बड़ी अजीब लड़की है।
1: हैं? लड़की? खैर, आपके यहाँ लड़की कहते होंगे।
0: हैं? तो आपके यहाँ क्या कहते हैं?
1: मियाँ, वही एक ही नाम है।
0: तो फिर वो बहुत मोटी होगी।
1: मोटी होगी? खैर हाँ, बहुत मोटी है।

0: कीजिए, आपने तो मुझे बहुत पतली बताया था।
1: मैंने कभी आपको इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं किया। अब फिर क्या आप सिर्फ दुबली पतली को ही देखते हैं?
0: जी नहीं, जी नहीं, मैं देखने को तैयार हूँ, लेकिन लेकिन वो शर्म आएगी। दरअसल मुझे खुद शर्म आ जाती है।
1: शर्मा जाओगे?
0: आप जरा उन्हें इस कमरे में ले आइए।
1: हाय अल्लाह, इस कमरे में ले आऊं? माफ कीजिए, आप भी कुछ अनोखे आदमी हैं।
0: माफ कीजिए महोत्रीमा, मैं आपके रस्म और रिवाज से वाकिफ नहीं हूँ।
1: इसमें रस्म और रिवाज का क्या सवाल है? बात यह है कि पिछवाड़े से यहाँ तक बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, वरना वो
0: क्या वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती?
1: चढ़ सकती है, पर कमरा भी तो खराब हो जाएगा।
0: ताज्जुब है, भला उसकी उम्र क्या है? गाती तो बहुत अच्छा है।
1: ये क्या कह रहे हो, गाती अच्छा है? अरे आप तो मुझे पागल कर दोगे। और उम्र शायद 4-4.5 बरस की होगी। 5 सफेद हैं और फिर
0: 4 बरस? माफ कीजिए महोत्रीमा, 1.5 मन के करीब खाती है, 4 मटके पानी पीती है, 5 सफेद है। नहीं नहीं नहीं महोत्रीमा, मैं आपका दामाद बनने से बाज आया।
1: दामाद? निकल यहाँ से बदमाश, शोहदे लुच्चे। कैसे बैकी बैकी बातें करता है? गंगू, अरे गंगू, निकाल इस जानवर के डॉक्टर को गाल पकड़ के बाहर निकाल दे। अच्छा, मेरी बीमार भैंस को देखने आया है?
0: बीमार भैंस?
1: क्या कहेगा?
0: लेकिन इश्तहार में तो लगता है मैं गलती से दूसरे के घर में घुस आया।

शादी का इश्तिहार। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। कलाकार थे विनोद कृष्ण भट्ट, बीबी कपूर और लता गुप्ता। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आइए अब सुनते हैं तलत अजीज की गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी तलत अज़ीज़ की आवाज़ में यह गज़ल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए गाने पुराने ज़माने के।

प्रोग्राम का पहला ये गीत हमने लिया है फिल्म बागी से। इसे गाया है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
2: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, तेरी मेहरबानियां फिल्म से। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार ने।

लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 10:30 बजे हैं, लीजिए आप सुनिए गाने नए तराने नए।

ये गीत था फिल्म सत्यमेव जयते से, और इसे गाया था आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसमें आवाज़ें हैं शाहिद माल्या और निशा मस्करीन हसन।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

लीजिए प्रोग्राम के अगले गीत में सुनिए अरिजीत सिंह, तकती कक्कड़ और अमाल मलिक की आवाज़ें। फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: लीजिए अब सुनिए फन्ने खां फिल्म का गीत। इसे गाया है सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार ने।

और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला और आखिरी गीत। इसे हमने लिया है राबता फिल्म से, गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: फिल्म संगीत के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप, लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक बहुत ही मशहूर शेर है।
0: जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है, और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने। और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

0: उनका ये बहुत मशहूर शेर है
1: जी। और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
0: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
1: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता
1: जी।
0: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओ 24 मई उनकी याद का दिन है।
1: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का
0: जी जी,
1: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
0: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओ पी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
1: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है। और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
0: बिल्कुल,
1: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा
0: जी,
1: जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
0: जी जी जी।
1: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
0: जी,
1: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब, नौशाद साहब का
0: क्या
1: संगीत
0: बात है, क्या बात है।
1: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
0: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम है मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे रहे हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे।

0: मजरूह लिख रही है वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना अमर जी?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ,
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था,
0: जी,
1: हर
0: जी,
1: घर में
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी, सुरूज नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मजाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या ना देखें, हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से

0: तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम इतना रंज जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा। पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा। पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्न होता गमे रोजगार होता। मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया, देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें। मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जो मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज है, उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
1: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
2: जी।
1: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी, कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं
2: जी। हाँ।
1: तो अब आप ये बताइए कि मजरूह साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास?
2: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है। एक इंटरव्यू है और हमारे विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
3: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से
4: जी
3: यानी जाने जाते थे, फिर बम्बई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
4: साहब मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादिसों से गुजरी है
3: जी।
4: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना कुर्ता पहनना लाठी लेके चलना। अब
3: शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का
4: वो हम लोगों का मिजाज
3: नतीजा है
4: जी। हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बाइकाट शुरू हो गया था
3: जी।
4: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब मैं उनका अकेली औलाद उनकी
3: जी,
4: उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर
3: जी।
4: और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। طبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے کچھ دن طبابت کی بھی اور کامیاب طبابت کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے سلطان پور میں جیسے کہ اس زمانے میں اودھ کے ہر قصبے میں

0: शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तब तीन से पहले मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाग जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा डोस है। चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा।
1: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा।
0: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार। चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबाई नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी। अच्छा, उसके चेयरमैन थे। तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
1: अच्छा,
0: तो मैं वहाँ तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक।
1: जी।
0: सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहाँ से गुजरे और मैं उनके जेरे साया, शेर तो पहले कहता ही था लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेरे साया राजे हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे मौलाना असद मोहाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
1: दानिश्वर
0: बड़े बड़े आते थे और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को दो को बुला लिया करते थे और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के शोरा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उछारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
1: शऊर आया।
0: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई संत मैयत नहीं थी। और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुसबत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुसबत हो, मनफी बात ना हो,
1: निगेटिव
0: नहीं हो, इतना तो जरूर रहा,
1: पॉजिटिव एटीट्यूड।
0: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहां एक दिन, तो कह ले भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई। मैंने कहा चलिए। 1945 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में, उस जमाने में यहाँ और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई, वो जैसे होता है ना एक शायर की हवा बन जाती है। तो मौलाना असरत मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।
1: अच्छा।
0: जिगर मुरादाबादी उसमें फिल्म में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई मेरी आवाज बड़ी
1: नहीं
0: अच्छी।
1: सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे हैं।
0: एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुतल्लिक से के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं, नया कम पैसे लेगा। चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और अल्टीमेटली मुझे 500 रुपए माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। तो जो गया यूं मैं फिल्म लाइन में आया।
1: अभी बड़े मशहूर हुए थे
0: जी हाँ,
1: जब दिल्ली टूट गया
0: तो उनको सैगल मरूम पसंद था, तो उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए। बचता हुआ चुना चला और मैं ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल्ली टूट गया हम जी के।
1: उससे तो और भी शोहरत।
0: जी हाँ, शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई, लेकिन फौरन ही। मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी, देखिए तीन चार मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने, वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लान नहीं है। प्लान कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे के हिस्से से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 के फसादा शुरू हो गए। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो राइटर होती उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक संत मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या बादशाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इश्क और मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए
1: जी,
0: बल्कि उसका एक सामाजिक रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, नहीं ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था।
1: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
0: यकीन और बेयकीनी के दरमियानी रास्ते पर।
1: लेकिन एक सवाल यहीं ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
0: कर सकता है। मतलब आप दयाशंकर नसीम की मसले लीजिए, गुलजार नसीम
1: जी,
0: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है
1: जी,
0: कि नेकी करो
1: जी,
0: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हमने अर्थ जैसा कि अर्थ किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना
1: जी,
0: उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना सामाजिक नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ, उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया
1: और नए अकदार बने।
0: हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इसमें लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
1: लेकिन मजू साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
0: जी,
1: जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया
0: जी। हाँ, ये आप
1: इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
0: हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे
1: जी,
0: एहतशाम हुसैन साहब
1: जी,
0: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
1: जी।
0: इत्तेफाक
1: तो इसके पीछे क्या कोई शौरी कोशिश है या ये एक अंदर से
0: शौरी कोशिश? तो देखिए जनाब
1: जी,
0: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शौरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
1: अच्छा,
0: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील बजायमी, कुमार बंकी, इस तरह के ग्रुप थे, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से मैं गालियां पड़ी के साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊंगा आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तनहा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूँ, उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो।
2: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है।
3: बिल्कुल,
2: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरू साहब हो तो फिर क्या कहने,
3: क्या बात।
2: अब मजरू साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरू साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
3: समारंगीन, समझ गए ना।
2: हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का,
3: जी हाँ, जी हाँ।
2: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो
3: क्या
2: गाने
3: रेंज, क्या रेंज,
2: क्या रेंज है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब, अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ,
3: IAS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं, आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का, बड़े मियां दीवाने।
2: आप गाना सुनिए।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में,
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है, कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है

कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
4: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है, तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया, जिसका नाम था जूली। सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी, देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था

0: शहीद भगत सिंह की मां का सशक्त किरदार।
1: तू न रोना के तू है भगत सिंह की मां।

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तो अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
5: नौराई माची लाड़ा ची लाड़ा ची गड़ा चंद्रा ची चंद्रा ची ग।
0: सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
6: तो

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे भेज उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
2: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
3: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: ओहो,
3: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
2: जी।
3: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: पहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन,
1: और अमरकांत का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है, पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल, नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।
2: विविध भारती के बाकी प्रोग्राम सब सुनेंगे समाचारों के बाद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। श्री मोदी की 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। ये कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करेगी। अदालत ने कहा कि कमेटी ये भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, बैंक तथा सरकार के संबंधित विभागों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल अजमेर से 3 नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस और अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने ये जानकारी दी। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और उससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नागौर के अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुई एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चकढ़ी गांव की सीमा पर एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। कार सवार सभी यात्री बुटाटी के पास संत चतुर्दास महाराज के मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 1:05 हुए हैं। लीजिए फिर से सुनिए विविध भारती।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

हवाओं पे लिखे, हवाओं के नाम ये गीत जो हैं, जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को नमस्कार, और आज की भारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेत रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नजदीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नजदीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफर, संग प्रश्न पहेलियों का इंतजार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नजर नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूर संचार की बात करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियाँ अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफर, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो जरूर बताएं कि जब कोई नई चीज आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक जमाने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वह हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहें, हमने सनम को खत लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफर सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर। यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतजार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे और किसी खास

मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं? वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूरसंचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफर के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी हवाओं पालकी परदेसियों, प्यार दास्तान देहरादून रंगून, गम उठाने ख्याल मन का नगर मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर ये जानकर भाई आपकी नींद खराब तो जरूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने सनम को खत लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, ना वो खत आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में एग्जाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो जरूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मजमून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफर में कुछ शब्दों गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पालकी, रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीक या परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाएं। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेली कम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

ये ना तुम्हें यकीन मानिए श्रोताओ, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हों, दो हों, तीन हों, बेशुमार हों, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्म आया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूं कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डॉक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिया का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी, और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है, यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा, तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं, तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिल दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो के सुर लहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था, कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है?

0: रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: आए, ओ देने ओ।

मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय है। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला वीबीएस के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफर में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं, जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है। संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शाम में इतनी तेज नहीं भागती थी जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थी और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बन कर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे, तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आंखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेशियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थी। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: सुंदर सी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था, गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

शुदा फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया, शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। शुरू की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं, इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया, टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत जरूर पहुंचे।

14 ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए, और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

खामोशी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोलते हेमंत कुमार की तर्ज थे। श्रोताओं, आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहां दूर संचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूर संचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: दूर संचार का अर्थ है दूरी पर स्थित व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। पहले के समय में संदेश पहुंचाने के लिए दूत, कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन ना केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूर संचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूर संचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सामाजिक जीवन में भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
1: मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, करनी है प्राइवेट बातें, व्हाट इज योर प्राइवेट नंबर, कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है, आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है, व्हाट इज योर स्टाइल।

0: What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? Karo kya dial number?
1: हालांकि दूर संचार के विकास के साथ कई सारी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दें, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लें, भविष्य की दिशा तय कर लें और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सकें। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीकी युग में चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ, और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान

0: बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन

0: स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ना हो जाए कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों।
2: आप सुन रहे थे नजराना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था।

आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत का। तो मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं?

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से आप दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचा आए।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहा हूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़ो।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चकली, आप अपने प्रिय से विदा लो, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष के ओट में छिप जाइए,
0: ठीक है।
4: शकुंतला अब कैसी हो बेटी, शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
3: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
3: अच्छा,
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
3: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी, और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
5: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए, यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
6: ओ, इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया। किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया। पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ

0: अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
1: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना। तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
0: अनसुया
1: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
0: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
1: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
0: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
1: तो
0: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
1: फिर
0: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
1: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
0: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
1: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
0: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुँचे आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया,

0: विवाह में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
2: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ
3: माँ प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूं वन ज्योत्सना, चलती हूं। देखो आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शालग्राम, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
5: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करे भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।

0: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
1: पापा,
0: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
2: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
1: प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
3: सखी
1: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
0: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
0: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना,
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
4: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
0: हाँ शरणक्रम, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगल।

0: कन्या सचमुच परायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या 1993 फिल्म साहित्य।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ वाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर की, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके।
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो, मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल
1: जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहा है। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाग के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनीवे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तुम इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके कर दिया था गड़बड़।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ, हाँ।
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे का शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर, मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी, वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है रमेश तलवार को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बसेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
0: यस,
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया, जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: वाह वाह,
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का, वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
0: बाबा,
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड मोरिंग करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको किसी बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में

0: डाले उन्होंने, तो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है, रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका, उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला।
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ये ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा कह रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, कि हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलिस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 400 BC की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है,
1: हाँ
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया,
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है,
1: हाँ
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ,
0: सामने?
1: हाँ
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह हाँ, नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है।

ये कर रहा हूँ, राज्य की मिशन लिया वो चल रहे हैं सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करूँ, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे। मतलब भाई देखिए, शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी, अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे, दीवार की शूटिंग थी। इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डिटेल्स दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो, तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करने शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है, चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे, करते थे वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त में मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म निकलता हूँ, ऐसा नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं ही रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
0: बाबा
1: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडू करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी

0: के साथ पहली बार पिलाई थी।
1: हाँ हाँ
0: हाँ। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया सतगुरु ने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ। मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर पीनी है तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

बेहतर से बेहतर की तलाश की जाए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश की जाए, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी लवली गुड इवनिंग। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी में अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट गरिमा सोनी के साथ। तो दोस्तों, आज है 17 मई और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है, जो हमारी अनियमित जीवन शैली है वो भी इसका बहुत बड़ा रीज़न बनती है। तो हमें अपनी जीवन शैली को रेगुलर मोड पे लेके आना है, ना कि उसे इनरेगुलर रखना है। अनियमित जीवन शैली से अगर हम बचे रहेंगे तो ये जो हाइपरटेंशन जैसी हम बात करें बीमारी, वो हमारे आसपास भी ना रहे। ये दिवस मनाने का दोस्तों उद्देश्य है लोगों को साइलेंट किलर कहे जाने वाले हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उच्च रक्तचाप, अगर हम बात करें, आज के समय में खराब जीवन शैली होने के कारण सबसे आम बीमारियों में से एक है। अनियमित जीवन शैली से बचाव और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें हम बात करें, जो हमारे खान पान में अगर हम कुछ सुधार करें और उससे हम हाइपरटेंशन से दूर रह सकें, तो उसमें हमें नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें, प्रतिदिन 5 ग्राम या एक छोटी चम्मच से कम नमक का प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम हाइपरटेंशन जो है उससे दूर रहेंगे। और जनरली हमने दोस्तों कई बार देखा है, ये कई लोग ऐसे हैं जो खाना खाने बैठते हैं और वो उसमें सब्जी या जो भी चीज़ है उसमें वो टेस्ट भी नहीं करते कि नमक सही है या कम, वो ऊपर से डाल लेते हैं। तो ये आदत सबसे गलत आदत है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आज से ही आपको ये बंद कर देना चाहिए। फिर आगे जाके अगर आप बोलो कि हमें ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, तो ये आपकी खुद की ही दिनचर्या या खुद की ही गलतियों की वजह से पैदा हुई होगी। तो अगर आप ऊपर से, आज भी हम बात करें, जब हम बात करते हैं कोई भी सब्जी वगैरह है उसमें जब नमक डलता है तो वो पक जाता है, तो वो उतना नुकसान नहीं करता जितना कि आप उसे ऊपर से डालते हो तब करता है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, नमक खाने में बहुत ही नॉर्मल यूज़ करें, ना कि बहुत ज़्यादा तेज़। प्रोसेस्ड जो फूड है या डिब्बा बंद स्नैक्स या पापड़, जो भी हम कह रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नमक या फिर कुछ और स्पाइसेस होते हैं, उनका प्रयोग भी हमें कम करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पौष्टिक भोजन अपनाना चाहिए, जिसमें हमें डाइट में हमारे ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को हम शामिल कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों टाइम हमारा पौष्टिक भोजन करते हैं और चीज़ें ध्यान बैलेंस रखें और एक रूटीन से टाइम से भोजन करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि आपका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स ही नहीं है, सुबह का आप दोपहर में कर रहे हो और शाम का बहुत लेट नाइट कर रहे हो, तो ये भी एक अनियमित जीवन शैली का ही पार्ट है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट आप सोने से रात को 2 या 3 घंटे पहले अपना भोजन कर लो, जिससे कि आप उसके बाद में थोड़ा वॉक कर पाओ, वो डाइजेस्ट हो पाए, उसके हम बात करें जैसे पानी पिया जाए, उसको प्रॉपर डाइजेशन हो जाए उसके बाद। ऐसा नहीं हो कि खाना खाया और तुरंत सो गए, तो भी हम बात करते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं हमारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। एक हमारी सक्रिय दिनचर्या, एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जिसमें हम बात करें नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है, नहीं होता तो एटलीस्ट वॉक तो होनी चाहिए सुबह या शाम। आप शाम को भी अगर खाने के बाद में थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट वॉक करते हो तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और साथ ही साथ वेट को कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये नहीं है कि आप फिज़िकली देख रहे हो कि फ़िट है, ओके है, उसके बाद में भी हमारे को ये बीपी, शुगर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ क्यों हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा एक और रीज़न है मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, बात करें स्ट्रेस और हैबिट्स की, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो भी हम देखते हैं बहुत सारे रोग हमारे अंदर होते हैं।
तो हमेशा आप योग आसन वगैरह करेंगे तो आप कुछ ऐसे करो जिससे कि आपके स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर पाओ, मैनेज कर पाओ। और जब तक हम बात करेंगे, हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे, एनजाइटी से दूर रहेंगे, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट रहेगी। और कोई भी तरह का अगर नशा कर रहे हो तो उससे दूरी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरी नींद लेना। जी हाँ, हम देखते हैं जनरली ये चीज़ होती है लेडीज़ में, ये देखा है, लेट नाइट सो पाते हैं, सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए, उसके बाद में नाइट नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा। तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो बढ़ रही है वो भी इसी रीज़न से बढ़ रही है कि वो प्रॉपर अपनी जितनी उनकी बॉडी को रेस्ट चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। उसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए। तब हम बात करेंगे कि अगर आपको ये बिना कोई दवाई लिए आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हो, आप बिल्कुल फिट हो। और हम बात करें कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, हमारी रेगुलर जो जीवन शैली में ये सारी हैबिट्स को अपना लें, जो हमारी अनियमित जीवन शैली है उससे हम बचे रहें, तो ये जो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है उससे हम दूर रहेंगे। और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की शायद ज़रूरत ना पड़े कि अब इससे हम कैसे बच पाएँ या इनके लिए हमें टेबलेट्स को प्रिस्क्राइब किया जाए। तो कोशिश ये करें कि हमारी जो दिनचर्या है उसी को हम इतना संतुलित बना लें कि हमें डॉक्टर के पास एटलीस्ट इसके लिए जाना ना पड़े। तो दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की ओर और सुना देते हैं ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। जी हाँ, एक डिजिटली हम देख रहे हैं कि एक तरह का ब्रेक बन चुका है, एक डिवाइडेशन हो गया। हम बात करें ग्रामीण बनाम शहरी युवा के बीच। भारत में ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन

गांवों और शहरों के युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढांचे और उपकरणों की उपलब्धता में एक गंभीर अंतर को उजागर करता है। यह असमानता शिक्षा, रोजगार और समग्र सशक्तिकरण को प्रभावित करती है, जिससे जमीनी स्तर के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगर बात करें डिजिटल साक्षरता और शिक्षा की, तो शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं कंप्यूटर की पहुंच लगभग 23% और 65 से 70% से अधिक घरों में इंटरनेट मौजूद है। और कंप्यूटर लगभग हम बात करें तो 25-30% जो डेटा हम देख पा रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि घरों में उपलब्ध है। और नेट की जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, वो हम देख रहे हैं 70% से अबाव है जिनके घरों में इंटरनेट मौजूद है। जबकि शहरी युवा को पूर्ण डिजिटल आधार संरचना यानी कि ब्रॉडबैंड, तकनीकी सहायता और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का लाभ आसानी से मिल रहा है। और इसी के अगेंस्ट हम देखें तो ग्रामीण भारत में केवल 35% परिवारों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है और केवल 4% आबादी लगभग के पास में पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसे हम कहते हैं, वो अवेलेबल है। इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि ग्रामीण युवाओं को ई लर्निंग, डिजिटल क्लासेस और ऑफलाइन जो हम देखते हैं कि तो उनका जो एक मेन फोकस रहता है कि नहीं, ऑफलाइन ही कंटेंट अवेलेबल रहेगा क्योंकि उन्हें ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती। ये एक बड़ा डिस्टेंस मुझे लगता है कि ये डिजिटल डिवाइड की वजह से देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं हाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट जिसमें 4G 5G आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि उच्च नेटवर्क और आवासीय बिजली आपूर्ति और युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहज भागीदारी का अवसर मिल रहा है। इसी के अगेंस्ट अगर ग्रामीण युवाओं को ई लर्निंग, डिजिटल क्लासेस या हम देखते हैं कि उनके वहाँ बिजली की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से भी वो थोड़ा पिछड़ रहे हैं। शहरी युवाओं को हम देखें तो AI जो कि और कोडिंग हो गया, टेक्निकल लैब हो गया, इसके लिए आसानी से कोचिंग के अवसर भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन कंटेंट भी उनको अच्छे से प्रोवाइड हो जाता है। जबकि ग्रामीण उपकरणों तक सीमित पहुंच के कारण ग्रामीण युवाओं को डिजिटल इमारतें कम होना और भविष्य में डिजिटल आधारित स्वामित्व से वो थोड़ा वंचित रहते हैं। तो ये एक तरह का हम देख रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे बहुत ब्रेक हो भी रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्रामीण जो युवा है वो किस तरह से पलायन कर अपनी शिक्षा को एक मेन फोकस में रखते हुए वो शहरों में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और नो डाउट वो बहुत अच्छा अचीव भी करते हैं। उसके बाद भी हमने देखा है कि कई ऐसे परिवार हैं जो अगर अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाना, अगर वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, तो वो कुछ चीज़ों के लिए वंचित रह जाते हैं। हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, शायद आज शहर में अगर कोई युवा बैठा है, अगर उसको कोई सपोज़ कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है, वो नहीं सोचेगा कि मेरे को फॉर्म फिल करना है, वो तुरंत अपना फ़ोन या अपना PC उठाएगा और तुरंत अपना 10 से 15 मिनट का टाइम लेके वो फॉर्म फिल कर देंगे। बट यही अगर वहाँ जहाँ वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर कम है, या हम बात करें कि उनके पास अपना PC या फिर ऐसा मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें किसी थर्ड पार्टी के पास जाके ये काम करना पड़ेगा, या वहाँ बिजली प्रॉपर नहीं आ पाती, तो हम देखते हैं कि वहाँ भी उन्हें शायद उस एक 10-15 मिनट के काम के लिए अपना जो टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अब हम रह डिवाइड नहीं है, बट फिर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये हमें कभी देखने को मिलती है। तो ये एक तरह का डिजिटल डिवाइड ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच है, जो हम मान के चल रहे हैं आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आज हर गाँव में हम देख रहे हैं कि अच्छा नेटवर्क, 4G 5G नेटवर्क अवेलेबल है और हर एक पर्सन, हर एक फैमिली में हम देख रहे हैं कि एक एंड्रॉयड मोबाइल की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो रही है। तो शायद ही अब ऐसा कुछ रहेगा जिसमें हमें लगे कि ये होता तो डिजिटल डिवाइड कम हो जाता। तो इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है कि ग्रामीण जो युवा है वो खुद सोचे कि हम अपने देश, हम अपने गाँव के लिए क्या कर सकते हैं, और इन सब जो चीज़ें हमें नहीं मिली, हम अगर किसी से वंचित रहे, तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या जो अब आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तो उन्हें हम कैसे सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की ओर और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी टिप्स की। जी हाँ, आज के अगर युग में हम बात करें कि हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड अपना सिस्टम लेके चल रहा है, उसमें अपने डेटा को सिक्योर करना भी हमें खुद को आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना डेटा, हम जनरली देखते हैं, कई ऐसे बोलते हैं कि फ्रॉड हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं लूजनेस हमारी ही होती है। आप गलत लिंक पे क्लिक कर देते हो, OTP बता देते हो, ऐसा कुछ। तो आपको हम कई बार देखते हैं कि गवर्नमेंट हो गया, RBI हो गई, कई ऐड के माध्यम से कई ऐसे टोल फ्री नंबर भी डाल रही है और बहुत सारे मैसेजेस दे रही है कि आप किसी भी अनजान को अपनी कोई भी डेटा ना बताएं। बट हम पता नहीं क्यों अपनी ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं और डेटा को ओपन कर देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो फ़ोन है उसमें हमें सारी चीज़ के डेटा एक तो नहीं रखें। देखते हैं, जनरल वे में हम देखते हैं कि आपका फ़ोन है, हमारा क्या होगा, पासवर्ड होता है, मोस्टली डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आपने, या आप कोई ना कोई ऐसी डेट डालते हो जो आपसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना पासवर्ड बनाओ, थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, अच्छा बनाओ, जो आप याद रख सको। ऐसा नहीं कि हर कोई आप तक पहुंच पाए। आप तक अगर कोई थोड़ा भी आपको जानता है, या आप उसको बेसिक अगर आपके बारे में कुछ पता है, वो आपकी फ़ोन के डेटा को ले पाए, ऐसा नहीं करना है। कोई भी अगर गलत लिंक आए उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। या हम देखते हैं कि कोई भी आपसे फ़ोन करके बैंक या फिर ऐसा बोल के आपसे कोई OTP वगैरह मांगे, तो उन सब में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जनरली हम देखते हैं कई बार कॉल आते हैं, आपने ये जीत लिया, आपका इतने लाख का लोन हो गया, ये हो गया, बस आप एक OTP बता दीजिए, और हम तुरंत उन्हें OTP बता देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो भी हम बात करें फ़ोन है, उसमें जो भी हम डेटा जहाँ स्टोर करते हैं, उसके जो पासवर्ड है वो थोड़े स्ट्रांग रखने चाहिए। और हर कोई हमारी पर्सनल चीज़ें ना देखें, उन चीज़ों को थोड़ा हाइड करके रखना चाहिए। और हम किसी से भी टॉक करें, किसी से भी बात करें, बहुत सारे जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं, या ATM के नंबर हो गए, क्रेडिट कार्ड के CVV हो गए, कुछ हो गए, सारी चीज़ें फ़ोन में स्टोर करके रखेंगे या उनकी फ़ोटोज सेव करके रखेंगे, फिर ज़रूरत पड़ती है बस के कौन देखेगा दूसरी चीज़ें बस फ़ोन में। ऐसा नहीं करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें याद भी रखनी चाहिए। आप अपनी ये हमें ये सोचना चाहिए कि आज से अगर हम 5 साल 10 साल पहले की अगर बात देखें, तो हर एक पर्सन कम से कम 10-15 जो उनसे कनेक्टेड लोग थे, उनके मोबाइल नंबर, उनके टेलीफोन नंबर ईजीली याद रख लेता था। क्यों क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम हमारी मेमोरी को इतना शार्प कर रखा था कि ये हमारे करीबी हैं, इन्हें इनके हमें नंबर याद रखने हैं, इनसे हमें कनेक्ट करना है। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि हम बेसिकली अगर घर पे भी हम देखें कि अगर आपके घर में 5 फोन हैं, आपको 5ों मेंबर्स के नंबर याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारी मेमोरी को ये ऐसा इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि हमें याद रखने की कहाँ ज़रूरत है, फ़ोन में सब कुछ सेव है ना। तो उसी तरह हम डेटा को भी इतना ओपनली फ़ोन में रखते हैं, और हमारी हम देखते हैं कई बार हमारा सिस्टम हैक हो जाता है, फ़ोन हैक हो जाता है, और हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो चुरा लिया जाता है। तो इन सब से हमें अपने डेटा को भी सुरक्षित रखना है। बहुत ज़्यादा डेटा अपने फ़ोन में ना रखें, और जो भी है उसको भी हम देखें हाइड करके रखो, या ऐसी जगह रखो जिससे कि वो कोई भी उसे अगर चुराने की कोशिश करे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जो पासवर्ड्स वगैरह रखे वो बहुत कॉमन नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की ओर, सुना देते हैं ये गीत।

ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी भी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त गरिमा को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM बिंड 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के जेएमए चैनल को। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बालवाड़ी।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपनी मंजू दीदी का जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, आप कैसे हो? भाई आज तो आप बहुत ही खुश होंगे, होंगे ना? क्योंकि स्कूलों की हो गई है छुट्टियाँ, इट मीन्स पढ़ाई की छुट्टी। खूब खेलो, मौज मस्ती करो, शरारतें करो, घूमो फिरो, बस मज़े ही मज़े, है ना बच्चों? मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई है। तो भाई छुट्टी सबको अच्छी लगती है ना? आपको भी लगती है ना? बिल्कुल, छुट्टी अच्छी लगती होंगी आपको भी। तो हम बात कर रहे हैं घूमने फिरने की, है ना? लेकिन बच्चों पहले कुछ इस तरह से बात करेंगे कि मौसम जो है वो गर्मी का चल रहा है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है बच्चों। तो ऐसे मौसम में हम घूमने की सोचते हैं कि भाई, और जाना भी है क्योंकि छुट्टियाँ इसी मौसम में होती है बच्चों। तो एक कल्पना करिए कि हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत तेज़, जहाँ हम घूम रहे हैं वहाँ पैदल चलने का हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है, तो हम इधर उधर देखेंगे कि कहीं पेड़ हो तो उसकी छांव में हम थोड़ा सा आराम कर लें, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। यही देखते हैं ना बच्चों, गर्मी भी है, घूमना भी है और अच्छे से भी घूमना है। तो बस एक ही सारा है कि छाया हो सभी जगह। तो बस छाया कब होगी बच्चों? जब पेड़ होंगे चारों तरफ, हरियाली होगी तो छाया होगी, है ना? तो बस यही कहेंगे कि पेड़ हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, पेड़ हमारे पक्के दोस्त होते हैं बच्चों। और वैसे भी देखें ना तो प्रकृति और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। हम हैं तो प्रकृति है, प्रकृति है तो हम हैं। सही बात है ना बच्चों, है ना? और देखिए ना, पेड़ हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो हमें ज़िंदा रखने के लिए, यानी कि जब हम ज़िंदा कब रहेंगे, जब सांस लेंगे, सांस लेने के लिए वो हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, है ना? फल फूल छाया और दवाइयाँ वो सभी इन्हीं से मिलती है, हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है ना बच्चों। और इसके अलावा हम कहते हैं कि पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित रखने के लिए भी पेड़ बहुत ज़रूरी है। और देखिए ना, पेड़ हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ अपना देते हैं, इसीलिए ये हमारे सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त कहलाते हैं। ऐसे ही नहीं कहलाते हैं पेड़ हमारे दोस्त, क्योंकि पेड़ हमें बिना मतलब सब कुछ अपना, फल फ्रूट लकड़ी सब कुछ देते हैं, है ना? और पेड़ हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी सहायता भी करते हैं बच्चों। कैसे? अब हम बात करते हैं, देखिए ना, वृक्ष अनेक पक्षियों और पशुओं का भी, यूँ कहें कि वहाँ घर होता है उनका। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और भी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनका तना बड़ा होता है ना, वहाँ पे पक्षी अपना, यूँ कहें कि घोंसला भी बनाते हैं, अपना घर भी बनाते हैं। वो चिड़िया घोंसला बनाती है, बाकी और जो पक्षी होते हैं वो लकड़ी को काट के पेड़ की और वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, है ना? और वृक्षों के बिना हमारी दुनिया, और देखिए ना बच्चों, हमारी, पक्षियों की, बच्चों की, वयस्कों की, सभी की दुनिया वृक्ष ही है। और इसके अलावा भाई जंगल में जाएंगे तो वृक्ष ही तो है हमारा सारा सब कुछ। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें पेड़ को बचाना चाहिए। और अभी जो सामने बरसात का मौसम आ रहा है ना बच्चों, उसमें हमें खूब सारे पेड़ भी लगाना चाहिए, और जो लगे हुए पेड़ हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए बच्चों, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, है ना? हम जो छोड़ते हैं गैस वो लेते हैं, और वो जो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, है ना? तो कहते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और वो हमें मीठे फल और मेवे भी देते हैं, घरों के लिए लकड़ी तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा कागज़ भी प्रदान करते हैं बच्चों। हम जो पढ़ाई करते हैं ना, उसके लिए कागज़ का बहुत महत्व है, तो वो सभी हमें पेड़ों से ही प्रदान होते हैं। इसके अलावा पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ना बच्चों, वो मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकती है। और प्रकृति का सौंदर्यीकरण भी पेड़ों से ही होता है, पार्क, सड़कें, इन सभी की सुंदरता बढ़ाने के लिए। कहते हैं ना कि पार्क में अगर पेड़ ना हो तो वो किस चीज़ का पार्क? और सड़क के किनारे किनारे दोनों साइड में पेड़ होते हैं तो सड़क की सुंदरता और भी बढ़ जाती है बच्चों, है ना? तो बस वही है कि हमें खूब पेड़ लगाने हैं,
लगे हुए जो पेड़ है उनकी सुरक्षा करनी है। हरे पेड़ों को काटना बिल्कुल नहीं है बच्चों, अगर कोई काटते हैं तो हमें वन विभाग में उसकी शिकायत भी करनी है। तो बस कहते हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो बच्चों मैं तो इस बरसात में एक एक दो पेड़ तो अपनी स्कूल में जरूर लगाऊंगी। तो आप भी कोशिश करिए कि अपना अपना एक पेड़, अपने ना अपना खुद का एक पेड़ लगाओ और उसको अपना नाम दे दो वहाँ पे, और उसकी सुरक्षा साल भर आप करो, साल दो साल, जब तक आप उस स्कूल में हो कि ये मेरा पेड़ है ना बच्चों, हमारी स्कूल बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर दिखेगी, और वहाँ पे पढ़ाई करने का खेलने का मजा ही कुछ और होगा। और पेड़ नहीं होंगे तो बरसात कैसे होगी बच्चों, पेड़ ही तो, यूँ कहें कि पेड़ से ही तो बरसात कहते हैं कि पेड़ होंगे तो बरसात होगी। तो हमें बरसात के लिए और गर्मी में बरसात होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं कुछ बरसात की, तो क्यों ना बच्चों हम मनोरंजन की दुनिया की ओर चलते हैं और गाना ये बहुत ही प्यारा सा गुनगुनाते हैं। मैं भी गुनगुनाती हूँ, आप भी गुनगुनाइए।

सही बात है बच्चों, जब बरसात आती है ना तो मन नाचने को करता है। ऐसा लगता है पशु पक्षी मनुष्य वृद्ध जवान सभी का मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, और हमारी प्रकृति भी यूँ कहिए कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। लगती है ना बच्चों, बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई। चलो हमने बरसात की बात की, बरसात सभी को अच्छी लगती है, लेकिन बरसात के साथ साथ हम ये बात करते हैं कि भाई आज पता है बच्चों आज क्या है विशेष दिवस? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ आपको, आज है 17 मई, यानी कि विश्व दूर संचार दिवस, है ना भाई। ये तो बात सही है कि आज के टेक्नोलॉजिकल ज़माने में जो हम देखते हैं कि चाहे कोई कहीं भी बैठा हुआ हो, हमारा रिश्तेदार हो या और भी कोई हमारा दोस्त हो या जो भी हो, जिनसे हम चाहे वो विदेश में क्यों ना हो, सात समंदर पार क्यों ना हो, लेकिन हम उससे आराम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि बस हम मिल लिए, अच्छे से फीलिंग आ सकती है। तो भाई विज्ञान ने प्रगति तो की है ना, ये तो हम सभी मानते हैं। तो क्यों ना हम सभी मिलकर आज के दिन को, जो 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, बहुत ही खुशी के साथ मनाएं। आज की दुनिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को उजागर करता है ये दिवस, है ना बच्चों। और ये दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की स्मृति में भी ये दिन मनाया जाता है, जो फ्रांस के पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ सम्मेलन पर हस्ताक्षर के साथ मेल खाता है। और इस दिन एक विशेष विषय चुना जाता है, और इसे मनाने के लिए पूरे विश्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं बच्चों। और इस दिन को मूल रूप से 2005 से मनाया जाना शुरू किया, जब सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस घोषित करने का अनुरोध किया। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2006 में निर्णय लिया कि WISD प्रत्येक वर्ष 17 मई को ये दिवस मनाया जाएगा, और ये दिन इंटरनेट की उस क्षमता के प्रति सभी को जागरूक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है ना बच्चों। हम कहीं बाहर पढ़ते हैं तो अपनी मम्मी की भी याद आती है ना, और परिवारजन के और भी जो सदस्य हैं उनकी भी याद आती है, तो तुरंत हम फ़ोन उठाते हैं और अपनी मम्मी से या जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे हम तुरंत बात कर लेते हैं, है ना बच्चों, करते हैं ना। बिल्कुल सही। तो आजकल दूरियां कुछ रही ही नहीं, किस वजह से? सिर्फ ये दूर संचार के साधनों की वजह से, है ना। तो चलो बच्चों करते हैं हम भी बात कुछ इस तरह से।

और देखो बच्चों, हमने ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही हम आते हैं हमारी बातचीत पर। अभी हम बच्चों बात कर रहे थे ना घूमने की, आपका मन भी कर रहा है ना घूमने के लिए? मैं मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि भाई मैं भी घूमूं। इन बच्चों तो ठीक है, अपन दोनों साथ बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, घूम लेते हैं। जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन फिलहाल कल्पना तो कर ही सकते हैं ना। तो चलो बच्चों, आज मैं आपको ले चलती हूँ भरतपुर के किले में। चलेंगे आप मेरे साथ, घूमेंगे? चलो बच्चों चलते हैं, फिर आप और हम दोनों फिलहाल बात करते हैं। फिर जब भी मौका मिला आप वहाँ जरूर घूमने जाइएगा, है ना? आपको अगर किसी का साथ हो रहा है या आपके पापा घूमने की बात आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो अवसर मिले तो आप यहाँ भरतपुर जरूर जाइएगा और वहाँ के किले का यूँ कहें कि अवलोकन कीजिए। देखिए बच्चों, भरतपुर का जो किला है ना, उसको लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में किया था इसका निर्माण। और इस किले पर कई आक्रमण भी हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं सका। ये भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग है, अतः इसे अजेयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कोई जीत नहीं सका था इसको। ये दुर्ग सेवर के निकट निर्मित है और इसके चारों ओर बच्चों मिट्टी की दोहरी प्राचीर दीवारें बड़ी बड़ी बनी हुई है, इसीलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। और इस किले में दो दरवाजे बने हुए बच्चों। उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना है, जिसे जवाहर जाट ने 1765 में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे ये। और भरतपुर राज्य के जाट राजवंश के राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था ना, वो जवाहर बुर्ज में ही होता था। और इस दुर्ग में कई महल, बहुत सारे मंदिर और कई भवन हैं, जैसे कमरा खास, किशोरी महल, हंसा रानी महल, कचहरी कला, चमन बगीची, हमाम, मथुरा द्वार, बिना रेन गेट आदि कई महल हैं। और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित भी किए गए हैं बच्चों, है ना? और इसके साथ साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, आपको कभी कहानी सुनने का मन करता है? भई आप नानी के पास बैठते हैं, दादी के पास बैठते हैं, या और भी किसी वृद्ध जन के पास बैठते हैं, तो कभी मन करता है ना भाई हम कहानी सुनाएं दादी नानी हमें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, है ना? और कहानी का शीर्षक है बच्चों कि हमें ईमानदारी का फल मीठा होता है, तो हमें जीवन में ईमानदारी रखनी चाहिए। इस पे आप छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाती हूँ बच्चों। एक किसान होता है और वो जो है लकड़ी काटने का काम करता है। ये कहानी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी बच्चों। वो किसान लकड़ी काटने का काम करता है और एक बार क्या होता है कि वो लकड़ी काटने के लिए जाता है नदी किनारे, लकड़ी काट रहा होता है वो, और उसकी कुल्हाड़ी अचानक नदी में गिर जाती है, उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। बेचारा वो किसान बहुत गरीब होता है और वो वहाँ ईश्वर को याद करने लगता है कि हे ईश्वर, मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं कुल्हाड़ी नई नहीं, नहीं खरीद सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मेरी कुल्हाड़ी दिलवा दीजिए। जल देवता से वो आग्रह करता है। इतने में बच्चों क्या होता है, तुरंत वहाँ पे देवता प्रकट होते हैं और जल देवता प्रकट होते हैं और सोने की कुल्हाड़ी लेके उसको देते हैं। बोले कि ये कुल्हाड़ी है तुम्हारी? वो बोलता है नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर तुरंत जल देवता दूसरी कुल्हाड़ी चांदी की लेके आते हैं, बोलते ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अब वो किसान तुरंत बोलता है नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तीसरी बार में वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर भगवान उससे पूछते हैं कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? और वो तुरंत बोलता है हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं उस पर, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वो तीनों कुल्हाड़ी उस किसान को दे देते हैं। तो देखिए ना बच्चों, कितनी अच्छी बात है कि उसने ईमानदारी रखी, वो सच्चा था, इसीलिए उसको एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ उसे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी भगवान ने उसको दी। तो बस यही कहना चाहूँगी बच्चों कि हमें भी अपने जीवन में सत्यता के पथ पर चलना चाहिए, सदा ईमानदारी अपने जीवन में रखनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, है ना बच्चों?
ये हुई बहुत अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कहानी। और इसके साथ ही सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी कार्यक्रम FM Wind 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का

0: भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म ठोकर के इस गीत के साथ। शब्द रचना है साजन दहलवी की और संगीत है श्याम जी घनश्याम जी का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म टूटे खिलौने से। आवाज़ यशुदास की है, गीत लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत बप्पी लाहिड़ी का है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी नागपुर के चिरमी चैनल से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म त्याग से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है इस गीत में SD बर्मन ने।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमय चैनल को। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा पांचाल की आवाज़ में ये लोकगीत।

माटिकेश्वर कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं भगवान दास महावर की आवाज़ में ये अगला लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बोलो
1: क्या
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
5: तो फिर सही नंबर
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
5: आपने तो बचा लिया दीदी
4: काम से नहीं
2: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव
7: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा

0: पर अब से कुछ ही देर पहले गोथेनबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। वहीं कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिव कुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
2: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रमाण की आवश्यकता ये है, भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने गांव और गरीब लोगों के लिए काम करना नए भारत के निर्माण की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 नव चयनित अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनितों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज सुनने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान किया। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया गया। इसमें जेईई मेंस में क्वालिफाई करने वाले 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आईआईटी रुड़की की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चांदी की कई श्रेणियों से फ्री सूची से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इन पाबंदियों के कारण अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी आयातक या जेवरात कारोबारी विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा। गैर जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
3: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को

0: जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पुलिंग करें करें साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फ़र्क।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बीकानेर रेलवे स्टेशन से अपने आवास तक का सफर ई रिक्शा से तय कर ईंधन बचत का संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आज जोधपुर में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है, आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में दो दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसीए के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
1: इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश भी मौजूद रहे। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राज्य के सभी संग्रहालयों तथा स्मारकों में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश मुक्त रखा गया है। वहीं इससे एक दिन पहले आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक रखी गई है। इसके जरिए शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में कल दिल्ली एम्स की टीम ने कोटा का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। इस बीच अब तक 16 से अधिक महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले सामने आ चुके हैं। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार रहस्यमय संक्रमण से अब तक 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर रखे गए। इनमें विशेषज्ञों ने लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भी शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर पीएमओ डॉ जितेंद्र भामू ने लोगों को उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज नहीं करवाने पर इससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
3: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच पीडी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के एएसआई सुनील विश्नोई को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी ने ये राशि दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी। राज्य में बीते सप्ताह से मौसम में जारी उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच गर्मी का असर फिर से तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी तथा हीट वेव का प्रकोप रहने के आसार जताए हैं। विभाग ने आज भी 8 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल आने की संभावना है। पश्चिम जिलों में लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस बीच बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है और रातें भी काफी गर्म दर्ज की जा रही हैं। वहीं करौली में आज दिन का तापमान 45 डिग्री के पार मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री

0: बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफल आयोजन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन कुमार पारीक ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निशांत जैन करेंगे और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन कर कार्यक्रम के सफल संचालन, योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा योग प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी तय की गई है। डॉक्टर पारीक ने बताया कि जनमानस में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 2 मई से 20 जून तक 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान के तहत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर योग विषयक व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी ऑर्थोबायोलॉजिकल रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक कोटे से ये राशि मंजूर करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक संसाधनों के विस्तार के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण होगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और शोध तथा उपचार कार्यों को मजबूती मिलेगी। जिले में स्कूली विद्यार्थियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और राजस्थानी पुस्तकों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी पुस्तकालय में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए फ्लैक्स तथा प्रदर्शनी लगाई गई है। अकादमी के सचिव शरद केवलिया ने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 14,000 पुस्तकों के संबंध में विद्यार्थियों को बताते हुए राजस्थानी में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीकानेर में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान के जरिए आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये विकास रथ जिले के गांवों और ढाणियों तक पहुंचे, जहां पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। यह अभियान कल संपन्न हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से राज्य सरकार आम जन के द्वार तक पहुंचकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ देती रहेगी। बीते दिनों जिले के 40 सरकारी विद्यालयों में इंटरैक्टिव पैनल और ड्यूल डेस्क वितरण कार्यक्रम रखा गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हुड़को द्वारा सीएसआर के तहत दी गई ये सामग्री बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। हुड़को द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे इन विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर को योजना के जिला नोडल अधिकारी और आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खेचर ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2026-2027 के लिए जिले से 10,55,45,000 रुपए के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करने और व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जूनागढ़ के सामने स्थित शिखरबंद महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में प्रसाद वितरण, फूलों की रंगोली और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हलका माए

0: आपसी सहयोग माथे बतल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करने री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जा। समाचार साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन री दो दिन री यात्रा माथे कुछ देर पहला गोथेनबर्ग पुग्या। हवाई अड्डा माथे स्वीडन रा प्रधानमंत्री श्री ओल्फ क्रिस्टनसन प्रधानमंत्री श्री मोदी री अगुवाई करी। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वीडन रा प्रधानमंत्री रे साथ है कारोबार तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सप्लाई कड़ी रक्षा अंतरिक्ष जलवायु परिवर्तन नियंत्रण माथे बतल करेला। दोनों नेता यूरोपीय आयोग री अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन रे साथे यूरोपियन उद्योग गोलमेज सम्मेलन माए बोलेला। आ प्रधानमंत्री श्री मोदी री संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा रो तीजो चरण है। वठे काले आपरी यात्रा रा दूजा चरण माए भारत और नीदरलैंड्स आपरा हिता ने सामरिक थर माथे ले जार 17 करार करिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप टेक्नोलॉजी भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार वेला। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क रा पहला चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस रो उद्घाटन करता वणा कहो कि भारत दुनिया रा हर उभरता हल्का में अगवा बन गयो है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय हलका कोटा बूंदी रा दौरा माथे पुग्या। वणा कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिवकुमारी बालिका हॉस्टल री नींव धरी। ई मौके श्री बिरला कहो कि शिक्षाओं समाज में सकारात्मक बदलाव लायो जा सके है। वणा बालिका शिक्षा रा प्रसार सारू खास कोशिश करण माथे जोरी दियो।
2: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता में कलम की आवश्यकता ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया है। स्कूल बनाए कॉलेज बनाए छात्रावास बनाए लेकिन समाज की आवश्यकता ये भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रशासनिक ओहदा माथे चुनिजा एहलकारों पिछड़ा और कमजोर तबका रा लोगों ने समस्यावां ने निपटावण सारू खास ध्यान रखने री बात कही है। वणा गांव और गरीब लोगों सारू काम करनो नुआ भारत ने बनावण री प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर माए प्रतिभा सम्मान जलसा माए बोल रहा हा। ई कार्यक्रम माए भारतीय प्रशासनिक सेवा रा 3 नुआ चुनिजा एहलकार और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद रा 59 नुआ नियुक्त एहलकारा रो सम्मानी करीजियो। राज्यपाल आखिरी छेड़ा रा मिनखरी आवाज सुनने और चुनिजा जन नुमाइंदा रे साथे चोखा व्यवहार करन री अरज करी। देशरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती सारू होने वाली JEE एडवांस परीक्षा 2026 रो आज आयोजन करीजियो। इन माए JEE मेन्स माए कामयाब रहने वाला 2.5 लाख पटेसर भेड़ा भिया। IIT रुड़की का न्यू आ परीक्षा कराई जी ही कंप्यूटरी मार्फत आ परीक्षा दो पारियां माए भी। केंद्र सरकार चांदी रा आयात माथे रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का न्यू जारी अधिसूचना मुजब चांदी ने कई वर्गारी फ्री सूची माऊ हटार इनने प्रतिबंध वाली सूची माए डाल दी जा है। आ पाबंदियां रे कारण अबे बिना सरकारी मंजूरी रे कोई आयात या जेवरात कारोबारी विदेशों चांदी रो आयात नहीं कर सकेला। गैर जरूरी आयात ने कम करण और विदेशी मुद्रा रा खर्च माथे लगाम लगाउन सारू ओ कदम उठाई जो है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माते AIR न्यूज राजस्थान माते सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माते ही समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो ही देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मारी ईंधन बचाने की मुहिम में जन नुमाइंदा अहलकार और लोग ही आपकी भागीदारी तय कर रहा है। ई कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर अजमेर सफर रेलगाड़ियों पूरा करो। ई दौरान वणा यात्रुओं रे साथ बतल करने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अर्जी करी।
3: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाली बीकानेर रेलवे स्टेशन आपरा रहवास ताई रो सफर ई रिक्शाओं तय कर ने ईंधन बचाने रो संदेश दियो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेली आज जोधपुर में लोगों पेट्रोल डीजल ने किफायती काम में लेने की अर्ज करी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज आमेर महल ने देखा, वना महल परिसर में चल रहा विकास ए संरक्षण रा कामा रो जायजो लियो। सैलानिया री बदती आवक ने देखना मुख्य सचिव आमेर ताई पुगन वाला मार्ग ने और बेहतर बनावन रा निर्देश दिया। वना डिजिटल संग्रहालय और गाइड सिखावन ने लेर अहलकार ने जरूरी निर्देश दिया। ई दौरान पुरातत्व महकमा रा निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेशी मौजूद रिया।
4: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क IGNCA के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: हर साल 18 महीने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जावे है। इन रो मकसद संग्रहालय री मार्फत सांस्कृतिक लेन देन और आपसी समझ ने बढ़ावा देवनो है। ई मौके राज्य रा सगला संग्रहालय और स्मारक में आवन वाला सगला सारू प्रवेश मुक्त राखी जो है। वठे इनू एक दिन पहला आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक राखी जी। इन री मार्फत शहर री धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रे प्रति जाग जगावन और उनरा संरक्षण रो संदेश दी जो। कोटा में प्रसूता मारी मौत और किडनी फेल होन रा मामला में काले दिल्ली एम्स री टीम कोटा रो दौरो करियो। इन री जांच रिपोर्ट अबे पेश करी जायला। ई बीच अजे ताई 16-32 महिलाओं री किडनी खराब होन रा मामला सामी आ चुका है। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता इलाज रे दौरान दम तोड़ दियो। ई रहस्य वाली संक्रमण अजे ताई 5 प्रसूताओं री मौत वह चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारा न्यारे ठोड़ा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गया। आम आए विशेषज्ञ लोगों रा ब्लड प्रेशर री जांच करी और इणु होण वाला नुकसान रा बारा में जानकारी दी। ई कड़ी में झुंझुनू रा BDK अस्पताल में शिविर लगाई गयो। ई मौके PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू लोगों ने BPU होण वाला बुरा नतीजा री जानकारी दी। वणा कयो के भगत माथे इलाज नहीं करावण माथे इणु कई चिंता जोग स्वास्थ्य समस्याओं रो सामनो करनो पड़ सके है।
5: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक BP है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच BDK अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB उदयपुरा प्रतापनगर थाना रा ASI सुनील बिश्नोई ने 1,00,000 रुपया री घूस लेवता गिरफ्तार किया है। ACB रा अतिरिक्त SP अनंत कुमार बतायो के आरोपी आ रकम दुष्कर्म री कोशिश और छेड़छाड़ रा मामला में मुकदमो दर्ज नहीं करने री एवज में मांगी ही। बालोतरा कने आज एक सड़क हादसा में 3 लोगों री मौत वेगी। दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस वे माते भी जिला पुलिस अधीक्षक रमेश बतायो के एक तेज रफ्तार कार रे बेकाबूवेर पलट जावण उन माए सवार तीन लोगा मौका माथे दम तोड़ दियो वठे तीन दूजा गहरा घायल वे गया। ए लोग गुजरात रा बनासकांठा जिला रा धानेरा गांव रा रहवासी बताया जावे। उठी ने अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माथे नागौर जिला रा चकढाणी गांव में एक कार और रोडवेज बस री टक्कर वेगी जिनमें चार लोगों री मौत वेगी और चार गहरा घायल वे गया। उठी ने पाली जिला रा देसूरी हल्का में घाणेराव गांव में दूषित भोजन कामाय लेवणु 11 लोगों री तबियत बिगड़ गई वहां रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करायो जावे। नाबे मौसम राज्य में लारला हफ्ताओं मौसम में चादरों उतार चढ़ाव और बदलाव रे बीच गर्मी रो असर फिर तेज होने लग्यो है। मौसम महकमो आपता दो तीन दिन में तापमान में और बढ़वार और हीट वेव रो असर रेवण रा आसार जताया है। महकमो आज ही 8 जिला में लू रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। दिन और रात रा तापमान में उछाल आवण री आस है। आथुणी और आथुणी अगुणी जिला में लू रो सबू बत्ती असर देखियो जावे। ई बीच बीकानेर चूरू बाड़मेर और जैसलमेर में करड़ी गर्मी रो दौर चाल रियो है और रात में घनी गर्मी दर्ज करी जावे। वठई करौली में आज दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार ना पीजियो। डीग जिला में खेती महकमा कानू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलायो जावे। 15 जुलाई तक चालन वाला ई अभियान रे तहत खेती महकमा री टीमा दुकाना और खाद बीज और कीटनाशकों का नमूना भेड़ा करेला इनने प्रयोगशाला में भेजने वाली गुणवत्ता जांची जाएला। मैं अब आखिर में खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हल्का में आपसी सहयोग माथे बातल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करन री अर्ज करी और विश्व रक्तदान दिवस मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाया। नेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
6: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के छिरमे चैनल को। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: राम राम सा। खेती बाड़ी कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ मैं आप रो प्रहलाद भाई। किसान भैया, अबे धीरे धीरे धीरे धीरे बगत जको है वो नेड़ो जा रही है। बरसात री रुत आउण माथे है, जेठ रो महीनो चाल रही है। हालांकि अब के दो है जेठ रा महीना, पर जून रो महीनो जको आई जून में लगे टके मानसून आया करे है। तो आपां खेती तो कराई यार, खेती वास्ते फस खेत जको भी तैयारी कराई यहाँ, पर मानसून रे बगत आपां पेड़ पौधा खेतान माइन लगा सका, बागवानी जकी है बा कर सका। तो ई वास्ते जे अगर फलदार पौधा आपां अगर लगावा तो बार वास्ते किसान भैया सबू अच्छो बगत जको है वो मानसून रो बरसात रो मौसम है। सही तरीके हूँ खेत या बगीचे री माटी आपाने तैयार करनी चाहिए जहर, उपयुक्त दूरी माते आपाने सही आकार रा खाडा खोदना चाहिए जहर, बाने भरपरार 10-15 दिन वास्ते खुला छोड़ देना चाहिए जे बाने खाद भरपरार। तो पौधा लगाने वास्ते आप कहीं कहीं ध्यान रख सका किसान भाई, तो ग्राफ्टेड पौधा काम में लेवा। एक तो हमेशा अच्छी जकी चौकी नर्सरी है बट हूँ ग्राफ्टेड पौधा लावा, और क्योंकि जगह है जल्दी फल देवनाला हुए बे तो आनी पैदावार जकी अच्छी हुए। मौसम रे अनुकूल आपनी जलवायु रे अनुसार ही पौधा चुना। जिया नागौर री आपा जलवायु री बात करा तो बिरमा ने नींबू है, अनार है, अमरूद है, बेर है, खजूर है, आंवला है। ए पौधा अच्छा विकल्प आपार वास्ते है, तो ए आपा पौधा लगा सका हाँ। आन वास्ते करनो काई वे आपन खाडो खोदनो है, गड्ढो तैयार करनो है, तो गड्ढे रो जो है छोटा पौधा अमरूद अनार नींबू वास्ते तो 60x60x60 सेंटीमीटर गड्ढो खोदा, और बड़ा पौधा जका है आंवला बेलपत्र आर वास्ते 1x1x1 मीटर रो गड्ढो खोदा। तो ओ गड्ढो आपा तैयार करा, बिन खुलो छोड़ दा। गड्ढो खोदने हूँ 5-7 दिन वास्ते बिन धूप में खुलो छोड़ देना चाहिए ताकि बिन माइन कोई कीट वगैरह हुए जका हानिकारक कीड़ा जका भी हुए फंगस जका हुए जका तावड़ो ला अगर खत्म हो जाए। आपा ध्यान रखा माटी और खाद रो मिश्रण जको है गड्ढे ने जको खाडो है बिन भरण वास्ते आधी जो आपा सामान्य माटी लेवा 15x20 किलो अच्छी तरह सजोड़ी गोबर जकी है बा लेवा, 1-2 किलो वर्मी कंपोस्ट और दीमक हूँ बचाने वास्ते थोड़ी नीम री खड़ी या ट्राइकोडर्मा जो है मिश्रण तैयार करा। वह उपजाऊ मिश्रण जो है बिना गड्ढा मायने भर दा और पानी रो हल्को छिड़काव जो है कर पर और माटी ने थोड़ा दिन रे वास्ते आपा बैठन देवा। अब रोपण रो तरीको आगे रोपना कदे आगे जुलाई रे महीने, तो आपा जब मानसून रे समय पौधा लगावा तो गड्ढे बीच में छोटी सी जगह आपा बना लेवा, पॉलीथीन हटावा पौधे री और सावधानी पाती हुआ आपा काट परार माटी जो को पिंड है बिन बिना टूटिया बीर खाडेर बीच में आपा जट जगह बनाई है बिन रखण वास्ते बट्टे आपा रख दी रहा। पौधो जमीन रे स्तर हुई लगावा, बहुत ज़्यादा गहरो नहीं दबाण है बिने, चारों ओर माटी रो पहला आपा हल्को दबा देवा ताकि मजबूत हो जाए, हवा जकी है बा नहीं लागे पगहों वास्ते दबा देना चाहिए। पौधा लगाने तुरंत बाद आपा ने भरपूर पानी जको है वो देवनो है, देखभाल भी करनी जरूरी है। तो पौधा रे शुरुआती 1-2 वर्षा माइन तेज धूप और पाले हूँ बचाव और आपा ने जतन करना है। पौधा सीधा राखण वास्ते भी सारे रूप में एक लकड़ी या बांस जको है वो आपा लगा सका। तो इस तरह हूँ आपा जका है फलदार पौधा लगा सका, बागवानी कर सका हाँ। भैया देखो खेती तो आपा करा ही, खेती रे सागे सागे फलदार पौधा है बागवानी रहे, जका आपारी माटी रे अनुकूल है, जका आपारी जलवायु रे अनुकूल है, बे पेड़ पौधा आपा ने लगाना चाहिए। जका बता दिया नागौर वास्ते कौन सा पौधा जका है उपयुक्त है, तो बा पौधा री आपा बागवानी कर सका हाँ। तो आपारो विकल्प जको है कमाई रो जरियो जको है वो बदे, अगर आपारे अच्छो पानी है माटी री जाँच करा ला, पानी री जाँच करा ला और पौधा आपार खेत में लगाया जा सके है तो पौधा आपा ने लगावना है। पौधा लगावा जन देखो एक तो हरियाली बदी, एक आपारी उपज पैदावार जकी है आमदनी रो और जो को नकदी फसल एक तरह जकी है बा पौधा रो व्यापार रूप में आपाने मिल जाए ही। तो आगे हलनु पहले लेवा विराम।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
2: और दूसरा
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: तो किसान भाई संदेशों तो आप तीन पूग तो हुई हो। देखो किसान भैया, बात आप करी पेड़ पौधा लगाऊं तो पेड़ पौधा भी लगाऊं, और खेती बाड़ी मायने आप विशेष रूप में ध्यान रखना है। बरसात आरो भगत आवे तो एक तो आप ध्यान आ रखा अबार जकी है अंधियारो भगत है, तो अंधियारो भगत मायने आप खेतरी माटी उड़े नहीं, ई वास्ते कणा और बांध पर आप जतन जका है बे करा आप ध्यान रखा। और खेतरी तैयारी रो भगत अबे है तो खेतरी तैयारी आपने करनी है। अगर आपारो खेत माटी जकी है बालू माटी नहीं है तो भी गर्मी की जुताई आप कर ली है ला, नहीं करिए तो अबे भी कर सको, तो बा जुताई आप कर ला और खेत ढेला बना पर ही छोड़ दा खेत ने। और बीरे पछे आप जिया जिया बरसात नेड़ी आउन रो भगत आवे बिया बिया आप जकी है खाद रो छिड़काव जो है वो भी कर सका। और खाद आप चाहवा तो किसान भाई थोड़ी मेहनत जरूर हुए, पर अगर कंपोस्ट खाद बना पर ही आप खेत में काम में लेवा तो बीरी होडी कौन हुए। साधारण खाद जकी है भी कई गुणा अच्छी जकी है बा कंपोस्ट खाद मानी जाए किसान भाई, तो आप खेत में खाद रो छिड़काव भी कर सका। खाद रो छिड़काव थोड़ा दिन पहली वीडियो है तो बा कहीं वे एकदम रिलजिया वे बीरा कण कण जका है खाद रा बिखरोड़ी खाद खेतरे मायने खेतरी रेतरी माटी जका है रेतरा कण है बान मायने मिल जिया वे। पचे बरसात हुए या सिंचाई आप कन है पानी रो साधन तो थोड़ी सिंचाई कर दें तो खेतरे मायने बे रल जिया वे और रल गुड़ मिल जिया वे जण आप खेतरी माटी जकी है बीर मायने खाद मिलने आपारी माटी जकी है बा उर्वरा माटी बन जिया वे आपारी फसलां जकी है यहाँ पर वास्ते चौकी हुए, तो आपने ध्यान रखनी है। एक तरह खेरा जगह अबार खेती हूँ पहली जगह है माटी पानी।

0: जांच भी अपन करा लेनी चाहिए। माटी जांच वास्ते अपन घणो की कौन लागे खेतों, अपन माटी लेनी है कई जगह और भी ने प्रयोगशाला तक पुगानी है, कोई खर्चे री बात न कोई और लंबो मोटो कोई खर्चो कोनी। तो आप खेतों कई जगह माटी चुन पर भी ने रला बो करा, थोड़ी माटी रला रलावता रलावता थोड़ी माटी जद रेवे तो बा आपा माटी जांच प्रयोगशाला है बीर मायने दे सका हर माटी की जांच चकिए बा करा सका हाँ। यही पानी भी आपा पानी कई देर ट्यूबवेल जकिए बिन चला पर ये पच श्या बोतल रे मायने पानी भरपूर और आपा प्रयोगशाला तई भेजा तो बीरी जांच भी हो जावे। तो माटी पानी की जांच भी करा ला एक खेती जद करा तो आ ध्यान रखनी है कि फसल चक्र जरूर अपनावा आपा। फसल चक्र मायने मतलब लारली भगत जको जकी फसल लियोड़ी ही जके खेत रे मायने जकी क्यारी रे मायने जकी जकी खेत रे जके टुकड़े रे मायने लियोड़ी ही बा बी जगह आपा ने बा फसल नहीं ले पर दूजी फसल जकी है वा लेनी है आ ध्यान रखनी है। और दूजी फसल लेवाला तो पुरानी जकी फसल लियोड़ी बीरा बगर बा सागी फसल लेवा भी पिटियारी में तो बा जका बीरा कोई कीट रोग लारे कोई रियोड़ा है तो वो भी फसल रे मायने पाछो पैदा हो सके। तो वास्ते आपा फसल बदलर बावा मिश्रित खेती भी ले सका जकी फैसला आपा मिश्रित रूप में हाथ ले सका बाने भी आपा ने लेनी चाहिए ताकि आपा रे कहीं है जोखिम जकी है बा कम कम हुए। कई फसल रे मायने कीड़ा और लट हो जावे तो कुआ हो जावे, कोई में निरोगी रहे फसल सुआ हुए तो क्यों रो मतलब है एक फसल अगर हमारे निरोगी नहीं रही तो बीरी भरपाई जकी है बा दूजोड़ी फसल कर देवे। इस तरह वहाँ पा खेती जकी है उनमें ध्यान रखा और अब ध्यान और रखा कि जब भी चौपाल में हाजिर हुआ तो कोई न कोई गाँव तरह करान बट जगह किसान भाई मिले बाऊ जकी हतावड़ियाँ करा बे आप लोगों तक पूर्ति करा करा। आज मैं हताई करी है उन्नत कृषक है राजेंद्र जी गेपाला जका है मारवाड़ मूंडवारा। तो सुनो आप बंतल हताई सुनाने खातर ले चला आपने आज रे गाँव तरह सुनो सा। राम राम सा,
1: राम राम सर, राम राम सर।
0: शुभ नाम कहीं आप रो?
1: राजेंद्र गेपाला मारवाड़ मुंडवा सर। हाँ
0: मारवाड़ मुंडवा हूँ। हो राजेंद्र जी गेपाला,
1: सर,
0: तो कहीं खेती बाड़ी कहीं लियोड़ी राजेंद्र जी?
1: खेती बाड़ी में वर्तमान में है जो कि कपास की बुआई शुरू हुई है तो अब के एक नई विधि कपास की बुआई करने की कोशिश कर रही है।
0: कपास री बुआई नई विधियों करने की कोशिश कर रही हो?
1: हाँ,
0: आप तो
1: लाल
0: अभी
1: लाल दो
0: जानकार
1: तीन
0: हो,
1: साल
0: घना घना साल हूँ जानकार हो खेती रार, नया नया प्रयोग आप करता रहे हो राजेंद्र जी। तो
1: सर,
0: कहीं प्रयोग क्या में बुआई में कर रहे हो सिंचाई में कर रहे हो?
1: बुआई और सिंचाई दोनों तीनों में ही कर रही है सब। वर्तमान में कपास की फसल में किसान आगे एक परेशानी आउंड
0: एक आप
1: होगी।
0: बताओ कपास री बुआई जकी है ना बा अब बुआई रो भगत है कहीं?
1: देखो आपांगा ये नागौर का बेल्ट में है ना, मई को जो सेकंड हफ्तो है वो आपांगे कृषि विभाग का जगह साइंटिस्ट मैंने बतायो कि मई का सेकंड हफ्ता में जगह वही करो बस अब बेस्ट रहे। आपांगे जगह आटा की जगह माटी है ध्यान विशेष कर नागौर के आसपास की अपांग मुंडवा की आ पीली माटी है पानी ने जोर कम करे
0: ठीक है।
1: यान थड़ी बेल्ट है बस सैंडी सॉइल हुए जगह तो पानी ने खांस ले ज्यादा। आपांगे बे जमीन है जगह ज्यादा पानी दे हो जन नीचू तो आली रहे और ऊपरों बंदर सूख जाए टाइट पड़ जाए तो कटाई ना कटाई कपास का अंकुरण को असर पड़ी बा कम होगी या उग्योड़ी ग्रोथ कौन लेवे। तो आ सब चीजा को लंबा टाइम खेती करान तो जकी जकी जिया ना पांगे टाइम टाइम पर परेशानियां आई तो कटाई ना कटाई बागो आपा
0: अब
1: उपाय
0: बुआई कर
1: निकाल।
0: दिया होगा यहाँ?
1: अबार कपास की बुआई कर लिया
0: बढ़िया बढ़िया। अब बताओ आप रो तरीको कहीं नहीं हो?
1: नयो तरीको ओ है कि किसान है जगह
0: जरूरत
1: नॉर्मली
0: है तो
1: कूला
0: इसको
1: बनाया करे।
0: जरूरत कहीं महसूस हुई है आपने?
1: जरूरत महसूस हुई कि कपास में सब पहली तो आप पानी निकियान बचावा दूसरो ईमेल की आगे निनान वाला टाइम लेबर ज्यादा लागे और निनान की मेहनत कचरो कम हुए प्लस इम एक गुलाबी सुंडी नाम की बीमारी होंड होगी एक कीड़ो लागे गुलाबी सुंडी लट बने हरा रंग की रिया करे नहीं सॉरी बा गुलाबी रंग की रिया करे तो बीप का जगह आप स्प्रे कराना सावन भादवा में बीघा स्प्रे हुआ करे जी टेम कपास घनी बदेर बरसात हुए लास्ट टाइम में जिया ना पांगे सरा दांग एर नोड दांग लगभग कपास लूने पहली बे बरसात हुई नहीं तो बी टाइम बी गुलाबी सुंडी का अंडा हुए बी गोसड़ ज्यादा हुए तो बी टाइम कपास बच जावे ज्यादा और जकी भी दवाया ना खा बे दवाया बा पौधा पर प्रॉपर काम कौन करे।
0: अच्छा
1: तो मैं इस साल कर रिया लाइन और लाइन की जकी दूरी है बी दूरी ने बढ़ा रिया
0: दूरी बता रही
1: प्लांट
0: हो,
1: टू प्लांट की है। हाँ,
0: बता रही हो।
1: लाइन टू लाइन की दूरी मिनिमम 3 फुट ले 4 फुट तक करने की कोशिश करी है।
0: अच्छा
1: कुछ जगह 3 फुट करा, कुछ जगह 4 फुट करा। ये दोनों चीजें एक डेमो हुई

0: तो अगले साल मान अपन ध्यान बढ़ जाए कि अपन ने ज्यादा बढ़िया केसी रेवी, तो अभी एक तो प्रॉपर स्प्रे हो जाए कपास बढ़िया हुए जन 3 फुट 4 फुट का गैप में। दूसरो अब बार है ना जान क्यारी में पानी देवा जो ना पूरा पूरा खेत आलो है, पूरा खेत में कचरो हो गए।
1: ठीक है,
0: अब बार में भाई एक नाली बनावा सिर्फ भी नाली नाली नहीं भी जाऊंगा जड़ जड़ कपास उजड़ी रहे।
1: अच्छा
0: भाई ड्रिप इरिगेशन है ना अपने आप में सिंचाई में पानी बचावे, लेकिन मांगा बेल्ट के महीने पानी है देखो थोड़ो भारी पानी कैसे का इन्हें लवणीय नहीं के क्षारीय पानी इनका थोड़ा पीएच भी ज्यादा है ईसी भी ज्यादा है, तो पानी ड्रिप इरिगेशन धीरे डाल देना फ्लोराइड है सार है तो वो जड़ के सारे आसपास ज्यादा जमा हुए
1: अच्छा।
0: पौधो ग्रोथ कौन ले। तो ये टाइम वो जो को मैं खुल्लो पानी दे हमार 2-3 महीना बरसात हुए जड़ तक तो वो बड़ो कारगर है भी। मैं माँ एक लंबी नाली बनावा और भी नाली में लगातार कपास की बुआई कर देवा और भी नाली ने पाइपों पानी पावा
1: अच्छा।
0: और 4 फुट आंदरी जगह दूसरी नाली है भी दूसरी नाली में फेरू आप पाइपलाइन रखा और भी लाइन ने और भी लावा। अब दोनिया के बीच में देखो 4 फुट को गैप रही है, ये गैप ने ट्रैक्टर द्वारा बरसाता हूँ यहाँ बचे हलिया कर दे।
1: अच्छा।
0: एक तो लेबर कम लागी, बरसात को जो को ज्यादा पानी हुई वो पूरो पूरो बा जमी एब्जोर्व करी एब्जोर्व करी जरा आप जगह प्लांट है फुल ग्रोथ कर ले।
1: ठीक है।
0: आ चीज है
1: पानी सीधो पौधे वहीं जाए इमें।
0: इनमें भी पानी सीधो पौधा गन लागी जन पूरा खेत में 4-4 फुट जगह छोट छोट नालिया है तो आप मान लो कम 40% पानी बच जाए आप खेत में।
1: ड्रिप मैरी में घणो फर्क हो रहे नहीं?
0: ड्रिप मेरी में घड़ो फर्क हो रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ी कबार पाउंड में मेहनत गनी पड़ी अबार देखो आप इन पानी देवा जन थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ी। ड्रिप पानी अबार तो ज्यादा लागी ड्रिप कम कौन लागे पानी ज्यादा लागी, लेकिन जो खोडो आप खुल्लो पानी पावा क्यारिया बनार बी की बजाय पानी कम लागी और बी में जगी परेशानी आवे आप की भाई ऊपर सूख जावे नीचो आलो ज्यादा रहे तो बियान को इम की गोनवे इम सार सूखी जमीन हुई जब भी ज्यादा ज्यादा पानी खींच ले जमा एकदम आप मारवाड़ी में किसान किया करे परालू जमीन रहे जो खुली जमीन रहे।
1: तो ओ तरीको राजेंद्र जी कटिया आप देखियो खुद ही याद करियो
0: देखियो को नहीं जकी जकी चीजें की परेशानी आप आई है लारला 2-3 साल में तो भी को एक रस तो निकालने की कोशिश करा। मैं आपको कहूँ की अभी भी 100% सक्सेस होगी इन्हें मैं तो खुद पहली बार अपना रही हूँ और 2-4 जगह देखो अब तकनीकी को युग है तो आप कटे भी सर्च कर सका गूगल के माध्यम कि भाई विदेशा में जकी खेती हो रही है कपास की या भारत के दूसरा खूना में भी खेती हो रही है तो भी मैं किसान का ही करे जगह में इनको उत्पादन बढ़ियों रह रही है और पानी की खपत है जकी कम रह दवाया भी कम लागे और उत्पादन खर्चा घटे और आपा की पैदावार बढ़े।
1: क्यों मतलब आप एक के साथ जगह है कई तरीका अपना रिया हो कि आज की सिंचाई करो यूं कीट रोग भी कम हुई और पानी भी बची और उत्पादन भी चौक हुई।
0: बिल्कुल और साथ में आपा के मेहनत जगी है आप भी निना नाली कम पड़ी कचरो कम कुचरनो पड़ी
1: कचरो उगे कौन बीच में सूखी रही जने।
0: हाँ ये सब चीजें ऐसा
1: बहुत बहुत ही बढ़िया तरीको। आप देखो किसान अनुभव अनुभव तो काम आवे धीरे धीरे आपने लंबो अनुभव है और अनुभव आधार माते आप वो तरीको अपना रिया और वो सक्सेस अगर उगियो तो फिर आप किसान अन बहुत फायदो मिली।
0: देखो साहब प्रहलाद जी आपके माध्यमों और रेडियो आकाशवाणी के माध्यमों मैं किसान बतानी चाहूँ कि वर्तमान में अब कुछ जगह भाव बढ़ रहा है तो खेती बाड़ी में जगह भी दवाइयां हैं काम आउनाड़ी बांगा सब भाव है जगह बढ़न डूगा आज हूँ पहली ध्यान में अबारा खरपतवार नासी कपास में ना कहना पहल के 450 की आंती अब के 650 की आवे तो अटीने तो आपांगे दवाइया का पैसा बढ़ रहा है और बट इन आपको उत्पादन है देखो घट रही है जन आप फील्ड में कितना दिन खड़ा रह पाओ तो भी को कटे न कटे पहली है देखो उपाय करना पड़ी जान आप प्रधानमंत्री जी अबार कियो कि भाई आप पेट्रोल डीजल को जितना बचा सकते हो उतना बचाओ
1: बात है।
0: तो जब कोई चीज नहीं मिलेगी तो उसको बचाना ही उसका उपाय है तो आप चाहवा के खरपतवार नाशी कम उकम नाका आप हल नहीं कर लिया मैं लेबर महंगी होगी तो आप कम उकम आदमी लार काम करा आप ट्रैक्टर के माध्यम कर लिया।
1: बिल्कुल वो तो जोरदार तरीको आप अपना रिया हो और बताओ आप पसे बीज और केड़ो काम ले हो कपास रो।
0: देखो इमें ना जकी बीटी वेराइटी है बा ही सक्सेस है और वर्तमान के महीने बोलगाट सेकंड जकी वेराइटी है बा आपांगा एरिया में जका किसाना की

0: चलित वेराइट है, बेहान की बुआया करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग है बीज जो बढ़िया उत्पादन दे रही है। तो आ फसल है जो की एक रोगड़ी फसल है। अब प्रहलाद जी साहब जबकि चौमासा के महीने खेती हुए इसमें यान मांगा बेल्ट के महीने टूबे लाना के सिर्फ कपास ही एक रोकड़ी फसल है, बाकी जवार बाजरी गवार यही हुई, मूंग की फसल आ खेता में हुए कोनी, मांगा में जकाम पानी लागो से। तो कटी न कटी आप चाहवा की इस सीजन में जकी रोकड़ी फसल है बिना बढ़िया तरीकों की बुआई करना ताकि 2 रुपया आमदनी किसाना की बढ़े।
1: अब क्या आप इस साल तो प्रयोग रहे तो और मात काम में ले रहे हो, दोनों तरीका में खेती करो, पुरानी पहली करता भी, यहाँ भी करो और यहाँ भी करो।
0: हाँ, ये 2-3 ट्रायल लागी कि भाई आन ट्रायला में इनको उत्पादन बढ़िया किसे दियो, तो इस वास्ते कृषि विभाग का जगह अधिकारी है बहु भी बात करा, केवीके का जगह साइंटिस्ट है बहु भी आप बात कर रही है। हाँ, इनके अलावा कटी जगह प्रगतिशील किसान है जगह बुआई कर रही है बहु भी बात कर रही है कि भाई आप दांगा बेल्ट में क्या कपास को उत्पादन ले रिया हो।
1: बहुत बढ़िया बात बताइयो आप, और खेत कपास की बुआई हो पहले काई काई तौर तरीका अपनाया हो काई?
0: देखो इनमें सब ज्यादा जगह पौधा ने 16 पोषक तत्व सही थे, तो कटे भी कोई ने भी पूछो या आपा का पूर्वज लगातार एक ही ध्यान में चीज आई है कि गोबर की खाद है जगह प्रचुर मात्रा में डाला तो एक उत्पादन बढ़िया ले रही थी। तो मैं सब पहली में भाई बढ़िया तैयार निकलिया बचे गोबर की खाद फुल ना क्या करे, हाँ बी के बचे ज्ञान आप आगे गवर्नमेंट का जगह साइंटिस्ट है भाई आप सजेस्ट करे कि जकी जिप्सम है बा आपका जमीन में नाको ताकि जकी आप पानी खींचन की ओ पीएच जको बढ़े जमीन को वो पीएच मेंटेन हो जाए। अब प्रजेंट में बुआई के दौरान क्या कोई अंग्रेजी खाद को नाका यूरिया DAP कुछ नहीं डाल रही है, इन जरूरत हुई भी टाइम आप इन ऊपर होंगे टाइम की निराई गुडाई हुई या वो 60 दिन को 45 दिन की ग्रोथ लिया पच मौसम कहीं रहे भी मौसम के आधार पर इन खुराक ऊपर दिया जाए
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि प्रहलाद जी साहब आओ मांगो जो को बेल्ट है और नागोरी पान मेथी को बेल्ट है, तो पान मेथी जगह किसाना के बुआई हुए बे पान मेथी में खूब सारी खादा नाले तो और पान मेथी की जड़ हुए छोटी पूरी मात्रा है जो की जमीन में पड़ी है बिन कोई नई काम मिली हुई है, कपास की जड़ हुए लंबी तो मैं कोशिश आई रहा पान मेथी वाला खेता महीने कपास जबकि पहली पड़ी है जबकि खाद पूरी पूरी काम में आ जाए और इनको उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिले।
1: बहुत बढ़िया सोच है आप रही और ध्यान रख रिया हो तो, और कपास की खेती मायने आप तो बताओ कहीं सावधानी किसान भाई ने रखनी चाहिए?
0: देखो सब पहली तो किसान भाई ने कपास की खेती में कदई भी इन्हें घनी नजदीक नहीं बानी, आप आगे गर्मी में कहीं पौधा दिखे संख्या में कम तो मारो तो किसान नो कहना है कि पौधों पौधा की दूरी कम कम 8-10 इंच दूर रहनी और लाइन लाइन की जकी दूरी है वह कम कम 3 फुट तो मिनिमम दूर रहनी, 4 रहे तो भी चले, कुछ वेराइटियां ज्यादा बढ़न की और 30 दिन ज्यादा लंबी तो बाना आप 1 फुट ज्यादा छोड़ सका, कुछ वेराइटियां जकी 30 दिन छोटी है बाने 3 फुट पर भी लगा सका, तो जितनी इन्हें दूर लगावा अबार वो खेत खाली महसूस हुई छिदो महसूस हुई लेकिन उत्पादन भी वो ज्यादा हुई। तो कपास की जगह खेती करे किसान बा किसान ने मारो तो वही निवेदन है कि संपूर्ण पहली कृषि विभाग का जगह आप अधिकारी है बहु जानकारी लो केवी के में जगह आप साइंटिस्ट बैठा बहु जानकारी लो और बी के पच ही कपास की बुआई करो तो एक शानदार उत्पादन आपने मिले।
1: बहुत ही बढ़िया बात जकी आप बताइयो राजेंद्र जी, आप रो अनुभव जो है लंबे समय रो अनुभव है और भी अनुभव रे आधार माते आप जगह नवा तरीका इजाद कर रिया हो, उम्मीद करा कि किसान भाइयों रे वास्ते अच्छा साबित हुई तो आप हतावड़ी करिए, आपने घणो घणो धन्यवाद।
2: तो किसान भाइयों हताई आप तक पहुँचती हुई उन्नत कृषक हा मारवाड़ मुंडवारा राजेंद्र जी गेपाला और सिंचाई री एक नई तकनीक री बात करी ए नालियों सिंचाई जकी है बड़ी बात करिए जहाँ पर ड्रिप सिंचाई बूंद बूंद तो कराई यार भी पौधे जड़ा में पानी जावे ही ईरमाई ने जो को पानी है वो भी एक खोडाण रे नेड़ी तकनीक है, पर खोड़ा में पानी री बर्बादी ज्यादा हुए, इम पानी री बर्बादी कम हुई। ओ पानी नाली नु पानी जो को है वो पौधे री जड़ा माए पुगाई पानी, और पौधे री जड़ा माए पुगावे जी है ड्रिप सिंचाई पुगावे भी यही है, पर थोड़ो घणो इम फर्क है। इम कहीं बिचली जगह सूकी रह जाए, बिचली जगह सूकी रही जने पौधे पौधे बिचली जगह बस सूकी रही जन बीर माए खरपतवार जो है वो उगे कोनी। तो एक तरह जकी है अच्छी तरीको अपना रिया है।

एआई ने एक बार जो है प्रयोग रूप में काम में ले रिया है। इस साल है खेती, पहली खेती करे है, बिया भी फवारा हूं, बूंद बूंद बिया भी करी, इया भी करी, तो आठ दोनों साल रे ई दोनों तरीका मायने उपज रे मायने किसे में फायदो हो रही है भी हूं पतो चाल जाए आने। तो अगर अच्छे हो तरीको हुए रेवे आरो तो आपा भी आगे भविष्य में इन्हें काम में ले सका। एक तरह हूँ जागरूक किसान है, अच्छा मेहनती है, नया नया तरीका ईजाद करने वाला किसान है राजेंद्र जी गेपाड़ा। तो आरी हथावड़ी जकी है हमारे वास्ते उपयोगी साबित हुई उसी। और हमें कार्यक्रम में एक गीत बजावा, पर गीतों पहली एक लेवा विराम।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार और लता मंगेशकर बेबी कविता की आवाज़ में है। फिल्म तोहफा से ये गीत आपके लिए। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है बप्पी लाहिड़ी ने।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम तूफान, शब्द रचना इंदीवर की, संगीत अनुमलिक का।

लकड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टॉफी से निकालो टॉफी एक नहीं अस्सी। लकड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टॉफी से निकालो टॉफी एक नहीं अस्सी। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11।

गुस्से में बंद करो जखड़ो चाहे जैसे गुल होती है बुलबुल छू हो जाऊं ऐसे।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आपके लिए अगला गीत फिल्म त्रिदेव से आवाजें अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और गीत आनंद बख्शी का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपके लिए फिल्म तुमसा नहीं देखा से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यू मी और हमसे, अदनान सामी और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत, शब्द रचना मुन्ना, धीमन किए संगीत विशाल भारद्वाज का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमित जनों से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: এই গোবিন ফোগাম শুনিয়া সিং ভোয়েনি বোয়েনি টোবরিয়ানি ছোটানি মোটানি উঠানি বেড়দানি জিমদানি হাতি করতানি সেবানি অবরে কোকেরি ওর হোগে
1: লুনকিরি ওর গণা গণা
0: রোম রোম শা এ বাই
1: কাই কো কাকা
0: এ বাই আব মে ধনে কাই কে ও ভয়নে কাই কো ভয়নে কাই কো কি হামজ মে নি আউতাই
1: এড়ো কাই কাকা
0: ए बोझ मदी बाई जिदा घर में टाबर जिदा मीनक बीतांग नी मोबाइल
1: हां मोबाइल लो काका मोबाइल कोई जमानो है काका मोबाइल तो हुई बच्चे
0: अरे बेटा इसको जो फायदा लेने चाहूंता वो लेता नहीं नुकसान ज्यादा करता है
1: की कर काका
0: ए बेटा देख आ जी जे जी की फायदे की एक जी बेटा तो आप बात कर ला
1: हाँ हम चार बाड़ी पूछ ला
0: हाँ ए आजकल भी मिस और सिस्टम आ गयो धारी काकी एक दिन धारे नन्हे रे फोन करियो
1: हाँ
0: ऐसी को धारे बड़े हगले घरा लदी के अभी में तो
1: हाँ हम मुंडो दिखे
0: हाँ हम मुंडो दिखे मैं बैठ बैठ दे घूमे जो भाई वो कहीं टेम आ गयो देख तो
1: वीडियो कॉल
0: हाँ वीडियो कॉल ए बेटा है
1: हाँ
0: ए देख बेटा मोबाइल ले जी को अपन एक भाई सुख दुखरी बात कर ला और कर ला ठीक है ए कोई जी की जानकारी हुई जी की फोन रे माई ने बा जी की पढ़ना ला रे बा काम आवे बा जो की बात है
1: हाँ काका
0: पर बेटा आ कोई दिन है जी ढींग रे जी का खेल खेले भी माई ने
1: हाँ काका और ढींग रा तो एक तरह को नशो हो गयो मोबाइल आलो
0: आई नी बेजा अब दे जी मोटरसाइकिल चलावे गड्डिया चलावे तो कान रे हर लटकौड़ी राखे
1: हाँ काका
0: तो तुम इसके बारे में कहीं कहूँ पढ़ लिखा हूँ
1: भाई काका मैं तो ये कहूँ जरूरी काम हुए ना जकी जना तो बात करनी हुई लेना ही पड़े जकी जानकारी लेनी हुए अपर खेती संबंधित है कोई और घनी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी कोई लेनी हुए
0: आज
1: मैं तो आपका काका हर एक चीज पूछ लो के गूगल माते कहीं अपन

0: जानकारी लेनी हो तो मिल जाओ, ज्ञान री चीज है जकी ज्ञान री काम है। आ तो सही है, ज्ञान री बात तो मिले ही में। पण काका मोबाइल ने अटली आंख्या रे आगे ही राख और काका
1: सही है बेटा, वो गलत बात है बेटा कि इसका उपयोग है वो सीमित करना चाहता है।
0: सही काका,
1: और असीमित जो उपयोग करता है तो ये नुकसान करता है।
0: सही काका, आंखिया खराब हो जावे, कमर में दर्द, काका कई तरह की बीमारियां हुए।
1: हाँ, जो सबने हाथ जोड़ो कहना है कि मोबाइल का उतना ही उपयोग करो जितना जरूरत है। ए बिना जरूरत के आको दिन जलाऊते ही रहता, क्या ही कहूंता, गेम खेलता है।
0: हाँ काका, कई कई टिंगर तो रात में मोड़ता ही, जागता ही रहे, देखता ही रहे।
1: नहीं बेटा, ऐसो काम नहीं करनो, पढ़ाई करनी चौकी चौकी बात जी की देखनी है, हुनी कम कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
0: हाँ सही काका,
1: ए अभी सही काका कौन वो फोन करे पीटी मिनट ला बजे
0: ओलो।
2: काका जी राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आप रो न्याओ भीजो खोके नीर गाँव भीजो।
2: नाव संजू गाँव सिर बालाजी।
1: ओ हो हंजू भाई, बालाजी में कोई करो
2: घर को काम।
1: अच्छा घर को ही काम करो, जो की बात दे भाई, ये बालाजी के नी गर्मी कैसी के भाई?
2: जोरदार पड़े।
1: ए तो हाव जेती राख जो।
2: हाव जेती घणी राखा।
1: हाँ सही है भाई, ए बाने बाणी की किताब भाई।
2: पान क्या थई कोने बाने पास है।
1: अच्छा ओ बाने ने पढ़ावे तू।
2: हाँ
1: आ जो की बात दे बे जाए, ए पावणा खाई करे भाई।
2: पावणा आरसी तिर काम करे।
1: ओ हो, ए पावणा ने खाई थोड़ो हाव जेती हूँ काम करे जियो।
2: हाँ हाव जेती हूँ करे।
1: ए टाबरिया मोबाइल तो कौन चलावे?
2: मोबाइल काका जी वो है कौन मागन छोटी किया।
1: अरे वाह मारी भाई, ए लूनी भाई यो।
0: काई को काका?
1: ए हंजू भाई के दा हमारे बात छोड़ गया मोबाइल है, हम तो राख दे नी, तुम कहता हो बात करना चाहूंता हो तो क्या नहीं चाहूंता बताओ।
0: हाँ करूँ काका, मैं बात करूँ।
1: ए करो जी बोलो। हेलो
0: हेलो। हाँ राम राम सा।
2: राम राम सा।
0: अरे थारे तो चोको जीव ने जाड़ा कौन है, छोटी क्यों फोन है जना, आजकल मोटड़ो फोन वे जो छुट्टिया होगी जन टाबर अबे काती सा हुए तो रोटी रोई बने होच कौन है रहा फोन रे चिपुड़ा बैठा रहे
2: भाई। मागंत है कौन मोड़ कौन छोटी के ही है मागंत।
0: अरे हावड़े थारे आराम है ओ?
2: आराम तो है ही।
0: सही है तो टाबर तो बस की है तई करे कोई काम धंधो ही करे, नहीं जन फोन रे कमाई आंखें खराब कर ले बैठा बैठा।
2: और काम घर को घणो ही करे फोन कौन दे।
0: हाँ टाबर हारो दिरावे तो।
2: हाँ
0: खेत में हूड़ कर लियो कहीं हो?
2: खेत में तो हूड़ कोकरी ने मार बल्थी बार जा बारी को नहीं ली जे।
0: ए बार छंटा व्यान लार था को नहीं या कहीं?
2: को एक उक दो सांट पड़ी।
0: ए प्रोग्राम के डोक लगे?
2: प्रोग्राम जोरदार लगे, फोन रोजिन लगवा लगे ही कौन।
0: ओ आज लागे तो आज कहीं हुणावा?
2: को जाज भाई।

0: जहाज भाई
1: कका यो
2: आब जाओ
1: ए शारदा भाई के खेतास ते जान दो जहाज भाई
2: ए जहाज भाई ने शारदा भाई ने जून दे दो।

0: नमस्कार।
1: ए नमस्कार जय राम राम जय आबरो नाम विजय कोकिनेर गांव विजय।
0: काका मारो नाम सोकिनरली है, गांव रूण है।
1: आओ हो सलाम मुली के मो।
0: वालेकुम सलाम।
1: ए रूण में खाई गिरो हो किन भाई?
0: काका बच्ची रे परीक्षा जरूर जो बेड आली।
1: अच्छा बेड की परीक्षा दे जो भाई छोकी बात दे भाई ने कह दीजो टेंशन नहीं करे जो।
0: टेंशन तो करे कोनी।
1: सही है भाई ने कहो भाई छोकी तेरी पढ़ी दी करी दे परीक्षा। और बजो गांव में परिवार में सब क्या नहीं हो?
0: ठीक है सब राजी खुशी है।
1: अच्छा ए भाई कोई गांव में नहीं एक ध्यान रखना कोई ज्यादा मोबाइल चले जाने के उन भाई रे मोबाइल कम चले करो।
0: हां सही का कहो।
1: ए जेंटो कौन चलो?
0: हां
1: सही बात है। ए और बजो गांव में परिवार में सब क्या नहीं?
0: सब ठीक है काका एकदम रेडी रेड है।
1: ए काके रामा शर्मा कीजो।
0: ओ सा जरूर जरूर।
1: ए लूणी भाई ओ
2: काय को काका?
1: ए होगी इन भाई का फोन है या तुमसे बात करना चाहूंगा बोलो। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ भाई जी राम राम सा।
2: राम राम सा। राम राम सा।
0: काय करो भाई जी?
2: काय करा काकर हागे बजे हिड़क नावड़ा पानी की बोतल लाई हूँ छतो लाई हूँ और काकी कहे काकर तोड़ निगराकड़ो लू बाजे।
0: सही है भाई जी आते हरा यारो आम लिया
2: बात तो काकी बिजोर पार भेजा काके ने
0: नहीं।
2: हो
0: ठीक भाई जी गानो सुनो है खेल तम्बाकू।
2: अच्छा कोई तम्बाकूड़ी लेव तो कोनी हो?
0: हाँ हाँ
2: अगर कोई लेवे तो बिना काई संदेश देना चाहो
0: बंद करो अमुंदी हो तो गलत है।
2: सही है सा शरीर की आनी पैसा की आनी।
0: सही है भाई जी।
2: काका आयो?
1: हाँ बेटा।
2: सोकिन भाई के बाद चेल तम्बाकूड़ी वालों गीत सुनाओ।
1: ए ओ जा मारी बेटी।

0: राम राम रात आपका जी।
1: ए राम राम जाई आबरो न्याओ भिजो खोके नीर गाँव भिजो।
0: नाम मोरा राम गाँव सीधवा।
1: ओ हो मुर्जी हिलवा में कोई करो।
0: कहीं करा काको जी बहुत ताली करा।
1: अरे वाई वा टेम श्री क्रिया करो।
0: हाँ
1: ए डावरो खींचो बड़े गाँव का नियो उसका जवाब
0: बताओ काका।
1: ए पांच बार बोलो दे दा बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जय बोलो।
0: ए तो बोली जी
1: अरे बोलो माई हो गए थाने
0: कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोली।
1: ए लूनी भाई।
2: हाँ काका।
1: ए भाई क्यों दे हमको क्या कहूंगे तुम बोलो। हेलो
2: हेलो
0: राम राम लूनी भाई।
2: राम राम सा भाई जी यो कूड़ कर ने एक ले जाओ कोई हागे हाले घरड़ा
0: नहीं है
2: सही है डाणिया में ही रहो खेत में ही जना।
0: हाँ खेत में रहो
2: सही है खेत में रहो जन दिन गुड़ तो पाँच बजे लागो जो को हाथ आठ बजे तक करना को।
0: हाँ नौ बजे तक करा पचे गर्मी घड़ी है।
2: हाँ सही है सर ढाणिया में रहना फायदा हुआ खेत में दे दिन ढुकी जो है।
0: नाम लेना चाहू
2: ले लो सा
0: मोटा मोटा है सरुण बेहू छोटा है उपमरा बेहू छोटा है सुभाष एक पोतो है जेठू एक पोतो है अशोक।
2: वाह सा वाह पोता ने दादा ने अगला नहीं रामा समा कीजिए और आज कहीं हुनोला
0: सबनी रामा समा है आज हुना तो भजन हेली हेली
2: काका भाई जी तो हेली भेजो।
1: ए उंगली बेटी खाऊ जाऊ तुम्हारी बेटा
2: आई लो।

0: राम राम शाही, राम राम शाही, आप रो जाओ बीजो खो के निर्गाओ बीजो।
1: ए मारो नाथ है इकबाल खान सिंगल नागौर अजमेर शेर से।
0: ओ हो इकबाल जी, ओ
1: हो
0: ए अजमेरी गेट नागौर में कहीं करता हो?
1: ए काम करा है मिस्त्री पने तो।
0: अजो हो कहेंगा मिस्त्री हो?
1: ए ट्रांसफार्म का मिस्त्री यहाँ।
0: अरे वाशिया वा, ए गेड़ोग चल ले काम रो।
1: अरे जोरदार चल रहा काका, मलिक मेहरबानी है।
0: अरे वाशिया वा, और कहीं चीज ये और बताओ, घर में परिवार में सब क्या नहीं हो?
1: सब लगी खुशी है, सांगी कृपा बोले आज में की और कहीं गई
0: है। ए सही के उठा हो आशीष है राम जी को। ए भाई हो,
1: हाँ
0: एक हिसाब करो जी हो।
1: हिसाब तो आई तो करा काका, ना बोलो।
0: ए 15 दूनी कितना हुए हो?
1: 15 दूनी 30 हुए।
0: ए 30 रुपए ने 5 और जोड़ दे जने कितना हो गए हो?
1: 35।
0: ए री मुझे कम कर दो, पहले दे दा बताओ वो कितना हुए?
1: 29।
0: अरे वाई शवा, ए लूनी भाई
2: काय को काका?
0: ए भाई डारे को नहीं दे दा हिसाब करे तू बोल। हेलो
2: हेलो,
1: हां लूनी भाई जी, राम राम।
2: राम राम सर, राम राम सर, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: ए काको देखो परीक्षा लेवे यहाँ कौन? इकबाल भाई तो हर दिन मिस्त्री पनो करे जना, हिसाब किताब रो काम पड़तो ही रेवे।
1: अब काको ले लो अबे, कनी आ जाओ और कनी कोनी आई में कहीं है।
2: ओ टाबर टोली सब ठीक है?
1: ओ मालिक मेहरबानी, सब जोल में राजी खुशी है।
2: ए पोता नगला केवड़ो माने?
1: हां पोता तो माने ने है, पर बाबा टाबर पण है जो या नहीं है। चल
2: अरे कई की टाबरिया फोन घणो देखे थकाला कितोक देखे?
1: हां फोन तो लेके लूण भाई, घणो मना करा अपन लेके फोन तो।
2: हां फोन देखे जको गलत है, आंखिया खराब हो जावे, टेमरी बर्बादी वे, टाबर खेल खेल रो वंचित रह जावे।
1: मना नहीं करा पर माने कोनी काई करा।
2: सही है, काके ने कहना पड़ी, एक दिन काके ने भेजा था टाबरा कानी।
1: हां काके ने जो जो काको की डाकी।

0: हे मारे भैया, वो तो भयंकी भयंकी शिव की पिछिन को बोगाम।
1: हेलो गोरबान।
0: ए बोगामी कोई भाई की धे भजन नहीं होना चाहता है तो तुम कहीं के उता हो
1: काका। दी त्वार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे ते नगर आकाशवाणी फोन करना है।
0: आज बोझ करना है। ए निमिर बेटा मारी बेटा
1: नंबर है काका। मिंडी 1 5 8 2 2 चोको मिंडी 1 6 8।
0: ए भाई
1: कहीं को
0: कई भयंकर फोन है। सुमे की कुमी में हम ले नहीं सी गया तो हाथ जोड़ के कहूं ते अगले दीदवार का फोन खड़ी जोर उनका पाना माजो।
1: काका है मई पाल भाई बनना है जड़ीस राउ जगदीश भाई जड़ीस राउ जयदेव जी कांता जी सोनी संजय कॉलोनी नागौर हजारी राम जी है काका अड़ाई और प्रकाश भाई है बंदड़ा।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोरी की भूमिका में

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमेचा से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में

0: शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना

0: आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बिंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनाएंगे जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें। तो पेश है ये पहली गजल।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। इसी गजल के साथ हमारा आज का ये सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से, आवाजें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अन्विता दत्त और कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे, और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

दिल लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, FM बैंड 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह 8:51 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।